उनको अहले जन्नत से पहले न किसी इंसान ने हाथ लगाया और न किसी जिन ने, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे।

ताकि जो फायदा तुम्हें हासिल न हो सका उसका गम न खाया करो, और जो तुमको उसने दिया हो उस पर इतराया न करो, और अल्लाह किसी इतराने और शेखी बघारने वाले को दोस्त नहीं रखता, जो खुद भी बुखल करें और लोगों को भी बुखल सिखाएं, और जो शख्स रूगर्दानी करे तो अल्लाह भी बेनियाज है, लायक हमदो सना है। हमने अपने पैगंबरों को खुली निशानियां देकर भेजा और उन पर किताबें नाजिल की और मीजान आदल, ताकि लोग इंसाफ पर कायम रहें, और लोहा पैदा किया कि उसमें असलहे जंग के लिहाज से जोर भी बहुत है और लोगों के लिए फायदे भी हैं, और इसलिए कि जो लोग बिन देखे अल्लाह और उसके पैगंबरों की मदद करते हैं अल्लाह उनको मालूम करे, बेशक अल्लाह जोर आवर है, गालिब है।

0: गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो। राब्ते लाइ 0301-2196-8151।
1: अस्सलाम वालेकुम अदा।
2: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
1: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो, छा कजे?
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई अथई?
1: न अदा।
3: यार आजकल शहरन तोड़े गोठन में जीए मेरापुर एफएम 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
1: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
2: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
1: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
3: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नर्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
2: राबते लाए हाकिम अली जिस्कानी
4: 0301-399-2836।
5: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी एफएम 94।

जी साईं, मुंहिंजा प्रोग्राम रोशन सुबुह मां ॿुधो पिया जी एफ एम 88 जे नेटवर्क तां, ऐं मां वहां जो मेज़बान नेमतुल्ला जुणे जो। साईं मुंहिंजा, अॼु असां अव्हां खे कोई बि सवाल नाहे नओ न का अव्हां खे असां गुज़ारत ॾिनी आहे, ऐं तव्हां असांखे सिर्फ़ु सिर्फ़ु पंहिंजा नाला मोकिले सघो था, तव्हांजा नाला प्रोग्राम में शामिलु कंदासीं। पर असांजी अव्हां खे गुज़ारिश इहा आहे त कंहिं बि गाने जी कंहिं बि कलाम जी फरमाइश न कयो, छो त हीअ चूंड मौसीक़ी हूंदी आहे, सिलेक्शन पंहिंजी असांजी हूंदी आहे। जेकॾहिं असांजा हिते सभई माण्हू कॉल कनि था त सभिनी जी असां फरमाइश नथा हलाए सघूं, तंहिंजे करे कोशिशि कयो तव्हां सिर्फ़ु पंहिंजा नाला लिखायो ऐं असांखे कंहिं बि कलाम जी फरमाइश न कंदो, तव्हांजी महिरबानी थींदी। पर साईं मुंहिंजा ॻाल्हि कंदासीं नेणनि जी, ऐं नेण जिते प्यार ऐं सूंहं जो मुहाविर ऐं मर्कज़ रहिया आहिनि, उते शाइरनि जी तख़लीक़ तोड़े तस्वरनि ते माहिल रहिया आहिनि। ॻाल्हि जॾहिं मूमल जे अखियुनि जी निकिरे थी त लतीफ़ सरकार उन्हनि ई नेणनि खे क़ीमती ऐं ख़ूबसूरत पथर अलमास सां भेटा ॾिए थो, ऐं को शाइर मोहबु पंहिंजे महबूब जे ओसियण में राति जे तारीख़ुनि ऐं अकेलाइनि में नेणनि खे ॼाटियूं करे ॿारे थो, ऐं किथे को मोहबु महबूब जे दूरियुनि ऐं विछड़नि जा नुंहं लिखंदे उन ई तस्वर में गुम थी सोचे थो त संदसि महबूब दूरीअ जे अहसास में ॿुॾी ऐं पंहिंजे निणनि जे ककर बणाए थो, ऐं ॻोढ़नि जो वॾो फुड़ो वसाईंदो रहे थो ऐं सुॾकनि जे सूर में सारींदो रहे थो।

जी साईं मुंहिंजा प्रोग्राम रोशन सुबुह मां ॿुधो पिया जी एफ एम 88 जे नेटवर्क तां मां जो मेज़बान नेमत लाजण जो साईं मुंहिंजा तव्हांजो असांजो साथ रहंदो ठीकु यारहें वॻे ताईं कॾहिं बि न वञिजो हिन वक़्तु हलूं पिया असां कमर्शियल ब्रेक तरफ़ ऐं न्यूज़ ब्रेक तरफ़ वरी वापसि ईंदासीं।

0: ऐसा बुरा ना माने मगर कश्मीर हो या कश्मोर, मीरपुर हो या मीरपुर खास, इनके सिर्फ नाम नहीं मिलते, इनका मिजाज भी मिलता है, इनका गैरत भी मिलती है और अपने हक के लिए खड़े होने का हौसला भी मिलता है। कश्मोर हो या कश्मीर, कोई अपने हक हाकमियत या हक मालकियत पर किसी को सियासी डाका नहीं डालने देगा। कश्मीर हो या कश्मोर, मीरपुर हो या मीरपुर खास, इनके अवाम अपने हकूक का सौदा करने के लिए तैयार नहीं। 27 जुलाई को कश्मोर की तरह कश्मीर का फैसला पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के हक में होगा। मीरपुर खास की तरह मीरपुर का आवाम तीर से शेर का शिकार करेंगे।
1: मियां साहब, अवां के खबर ना है, अवां के खराब न लगे तो मीरपुर हुजे या मीरपुर खास, कश्मोर हुजे या कश्मीर, उन्हनि जो रुगो नालो ना है हिक जेड़ा, पर संदन मिजाज ए गैरत भी हिक जेड़ी आहे। खैन हक लाइ बीहण जो हौसलो भी आहे। कश्मीर हुजे या कश्मोर, केर भी पंहिंजे हकनि ते धाड़ो हणण न ॾींदा। कश्मोर ऐं मीरपुर खास जी अवाम वांगुर आज़ाद कश्मीर जो बि अवाम नून लीग खे रद्द कंदो। आज़ाद कश्मीर जो अवाम बि तीर सां शींहं जो शिकार यकीनी बणाईंदो। सीनियर वज़ीर शर्जी लीना मेमण चयो आहे त आज़ाद कश्मीर जा माण्हू पीपल्स पार्टीअ खे वोट ॾींदा। आज़ाद कश्मीर जो अवाम वोट ज़रिए नून लीग खे रद्द कंदो। आज़ाद कश्मीर जे इलेक्शन में धांधली करण न ॾींदासीं।

कश्मीर में थींदड़ एहतजाजनि पुठियां भारत जो हथ निकितो। शरपसंदनि खे भारतीय फंडिंग जा सबूत साम्हूं अची विया। हिकु ॼणो गिरफ़्तार। सुद समा वारे वफ़ाक़ी वज़ीर अता तारड़ चयो आहे त ग़लति ॼाण पखेड़ींदड़ समूरी नेटवर्क जो तालुक भारत सां आहे। साज़िशी अंसरनि कश्मीर जो पाकिस्तान सां रिश्तो कमज़ोर करण जी नाकाम कोशिश कई। पाबंदी मढ़ियल जमायत जो चूंडनि में हिसो न वठणु भारत नवाज़ हुअण जो सबूत आहे। जथन ऐं कानून हथ में खणंदड़नि खे सोशल मीडिया ज़रियाती ॾिनी वई। पाकिस्तान ऐं पाकिस्तानी एजेंसियुनि बाबति गुमराह कंदड़ प्रोपोगेंडा कई वई। कश्मीर में नफेड़ पखेड़ण जूं नाकाम कोशिशूं कयूं वयूं।

0: अमेरिकी ऐं इसराइली ॾांहुं ख़िलाफ़ मज़ामत खां सवाइ ॿियो को बि रस्तो बाक़ी न बचियो आहे। हिज़्बुल्लाह जी जिदोजहद दुनिया जे आज़ाद क़ौमनि लाइ हिकु मुतासिर कंदड़ पैगाम बणिजी वई। लबनान ख़िलाफ़ इसराइली हुकूमत जे जाहिरियत जो ग़ैर मशरूत ख़ात्मो अमेरिका सां थियल मुआहिदे जी हिकु बुनियादी शर्त आहे। ईरान जे सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामना हिज़्बुल्लाह पारां वफ़ादारी जे अज़म लाइ लिखियल ख़त जो जवाब में चयो आहे त ईरान मज़लूम पर ताक़तवर हिज़्बुल्लाह मुजाहिदीन जे दिफ़ा खे पंहिंजो फ़र्ज़ समझे थो ऐं ईरान हिज़्बुल्लाह सां पंहिंजो स्ट्रेटजिक सहारो जारी रखंदो। आलमी एटमी तवानाई एजेंसी जे डायरेक्टर जनरल राफेल मारियानो गोर्सी चयो त नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार सां टेलीफोनिक राब्तो हिते जी ताज़ी सूरतहाल इलाक़ाई ऐं आलमी अमुन तोड़े इस्तक़ाम खे हथी वठाइण लाइ सफ़ारतकारी ऐं तामीरी राब्ता जारी रखण ते डायरेक्टर जनरल राफेल मारियानो गोर्सी चयो त इस्लामाबाद मुफ़ाहमती यादाश्त बाद उमीद आहे त धुरियूं ॻाल्हियूं ऐं राब्ते जो अमल जारी रखंदियूं छाकाणि त पुरअमन ऐं पायदार हल ताईं पहुचण लाइ ॻाल्हियूं इंतिहाई ज़रूरी आहिनि। डायरेक्टर जनरल गोर्सी डिप्टी वज़ीर आज़म खे गॾियल क़ौमनि जे सेक्रेटरी जनरल जे उहिदे लाइ पंहिंजी उमेदवार बाबति आगाह कयो। डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक़ डार गॾियल क़ौमनि हिकु मुअसर घण तरफ़े निज़ाम लाइ पाकिस्तान जे मज़बूत हिमायत जो वर्जाउ पिणु कयो।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 0300-338-5569।
3: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर, होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो। इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर, नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए, जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल की कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी। इरशाद ऑटोस, हालानी रोड, मेहरापुर। राब्ते जे लाइ 0320-18-00-003।
4: अस्सलाम वालेकुम अदा।
5: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
4: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
5: अदा दुकान जी मशहूरी कराई थई
4: न अदा?
6: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
4: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
5: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
4: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
6: ऑफिस जी मेरापुर FM 94, नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालानी रोड, मेरापुर।
5: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी,
7: 0301-399-2836।
6: आई मोहम्मद उमेर गोरी, 0319-1557-724।
8: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो GFM 94।

0: It's 10:15 a.m. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
2: आशिक होंडा शोरूम मेहरा पर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चौक पर एतमाद अम्बा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरा पर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कल रेट दे दस्तियाब है सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएम जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वने थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जैर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ती जिलाए आसिम हुसैन आराई 0307-3592120
1: खुशखबरी लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल अब फिक्र छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे बाजू टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट बार बार वेक्स और शेविंग से निजात नरम साफ और खूबसूरत जिल्द कम वक्त बेहतरीन नतायज अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569
3: अपना शहर अपना घर मेहरापुर और मेहरापुर की आवाज GAFM 94
4: आज रही सुबह जो

जी साईं मुंहिंजा असांजे पूरे मुल्क पाकिस्तान में ऐं सुहारी सुहिणी सिंध जे मथां बिल्कुलु ककर छायल आहिनि ऐं नाहे किथे कणकण आहे त किथे सिर्फ़ु आसमान ते जुड़ जा ककर

0: सचल की सरमस्त धरती,
1: फातिये मेहरान, सिंध की एक और पहचान,
0: GAFM 88 नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।
2: खुशखबरी साहिब डेज शफा मियां मरीजन के सेहत अवाजी हिफाजत
3: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है, सुनते रहो GAFM 94।
2: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहराबपुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज, एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहराबपुर, 03003385569।
4: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेहराबपुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम पी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर सूमर।

जी हां साईं मुंहिंजा प्रोग्राम रोशन सुबुह में वापसि अची चुका आहियूं ऐं तव्हांजो असांजो साथ रहंदो बाक़ी सिर्फ़ 15 मिंट ऐं 15 मिंट में अवां सां कुझु ॻाल्हियूं बि कंदासीं अवां जा नाला बि हलाईंदासीं ऐं अवां जी पंहिंजो पसंदीदा मौसीक़ी बि हलाईंदासीं पर ॻाल्हि कंदा साईं मुंहिंजा इश्क प्यार मोहबत जी गर्मी सर्दी जी ॻाल्हि करे चुका आहियूं मौसम जी बि ॻाल्हि करे चुका आहियूं पर असां ॻाल्हि इहा कंदासीं त शादीअ खां पहिरियां ऐं शादीअ खां पोइ पंहिंजो जेको छोकिरनि जो ख़्यालु हूंदो आहे या हुन जो उथणी वेहणी हूंदी आहे उहा कीअं हूंदी आहे त शादी खां पहिरियां केर बि हुजे उनजे बेडरूम में परफ्यूम पई हूंदी आहे उन में प्यार जा ख़त पिया हूंदा आहिनि ऐं उन में टीवी स्क्रीन वॾी LCD पई हूंदी आहे उते वेठो ड्रामा ॾिसंदो फिल्म ॾिसंदो ऐं साईं मुंहिंजा उते वेठो गेमियूं खेॾंदो पर किथे किथे जेको आहे सो मुख़्तलिफ़ जेके आहिनि पैकेज वारियूं मोबाइलियूं हूंदियूं ऐं विहाणे भरिसां डायरी ज़रूरु हूंदी बहरहाल काफ़ी इंसान जूं सोचूं प्यार मोहबत जूं ऐं जॾहिं वरी शादी इंसान करे थो ऐं शादीअ जूं इंसान जे मथां ज़िमेवारियूं अची वञनि थियूं त उन खां पोइ जेको आहे सो शादीअ किताब पढ़ण खां अव्हांखे पोइ न मिलंदा ऐं अव्हांखे मिलंदो शादीअ खां पोइ मथे जो सूरु मुख़्तलिफ़ टिकियूं ऐं पंहिंजो कर्ज़ जूं दरख़्वास्तूं ऐं अण अदा कयल मुख़्तलिफ़ बिल ऐं बटू जेको आहे वॉलेट आहे अव्हांखे खाली मिलंदो ऐं ॿार जा पेपर वठण लाइ फीडर वठण लाइ अव्हांखे हुकुम मिलंदो मुख़्तलिफ़ जोहर जोशंदा अव्हांखे वठणा पवंदा स्पंगरो दॿो वठणो पवंदो बहरहाल काफ़ी ज़िमेवारियूं इंसान जे मथां अची वञनि थियूं ऐं शादीअ खां पहिरां इंसानु हिकिड़ो आज़ादु ख़्यालु वारो आहे आज़ादु सोचनि वारो आहे सिर्फ़ु हुन जे ज़हन में ख़्याल ई हूंदा आहिनि बाक़ी कमु कार हुन खे कुझु बि न हूंदो आहे पर शादीअ खां पोइ ज़िमेवारियूं तमामु वधी वेंदियूं आहिनि पर बहरहाल इन ॻाल्हि खे छॾियो समीना कंवल जो ख़ूबसूरत नगमो ॿुधूं था गॾिजी इंजॉय कयूं

जी साईं, मुंहिंजा हाणे अवां दोस्तनि जा नाला जंहिंजो अवां खे इंतज़ारु हूंदो। दादू शहर खां इमदाद जतोई, अब्दुल ख़ालिक जतोई, मुबशिर हुसैन जतोई, ऐं साॻे माग याने दादू खां ई किफ़ायत लाइ जतोई, फारूक हैदर जतोई, दोस्तनि जी वॾी महिरबानी। ऐं नूर हुसैन तुनियो बदीन खां भाउ मैसेज कंदो आहे, भाउ जी वॾी महिरबानी। इक़बाल लाशारी सोनो खान लाशारी मीरपुर ख़ासि खां भाउ जी वॾी महिरबानी। नज़ीर खोसो सोबतपुर बलोचिस्तान खां, ऐं मोहम्मद ख़ान कुंभार वफ़ा जमाल कुंभार मोहम्मद अली कुंभार हाले पोटा स्टाफ लॻे मीरपुर ख़ासि खां, ऐं रेहाना ख़ान बखर खां, इन जी वॾी महिरबानी। ऐं कुझु नाला अञा दोस्तनि जा अवां ताईं पहुचाईंदासीं। फ़क़ीर महरम अली जतोई ॻोठु आगा ख़ान जतोई खां, हाजी सोराब मंगरियो, फ़रहान मंगरियो, नज़र मोहम्मद मंगरियो ॻोठु सचीरणो मंगरियो लॻे बकापुर खां, ऐं अज़ीज़ सोलंगी, भुट्टो सोलंगी, नूर अहमद सोलंगी मीरपुर ख़ासि खां, ऐं मीरपुर ख़ासि खां ई दोस्त आहिनि ख़ालिक लाशारी, ऐं मीरपुर ख़ासि खां मोहम्मद अज़ीज़ जरवार, मोहम्मद वसीम जरवार, ऐं रियाज़ जरवार, इमामदीन जरवार, भाइरनि जी वॾी महिरबानी। आसिफ अली चाचड़ वासिफ अली बुगटी लाड़काणे खां, क़ुर्बान अली ख़ासखेली झंडे मरी खां, अमीन मरी, अब्बास मरी, सत्तार मरी हाले पुटा स्टब खां, भाइरनि जी वॾी महिरबानी। भाग्यो खान शर, आज़मदीन शर ॻोठ खां लॻे सिंधड़ी, ऐं यासमीन मलक मीरपुर ख़ासि खां, रांझन कोरी लालचंद ऐं फरहान कोरी ॻोठ खां, पठाण खान खोसो, शाहबान खोसो ऐं शहबाज़ खोसो फुलजी स्टेशन खां, अठहतरि मोरी खां, हुमीर चंद, किशोर कुमार, भाइरनि खे गुज़ारिश त शॉर्टकट में नाला न लिखो, जेकॾहिं ॿीहर तव्हां शॉर्टकट में नाला लिखिया त तव्हांजा नाला ई कोन पढ़ंदासीं, छो तव्हां पंहिंजा नाला सिधा ऐं सॼी मुकमिल ए बी सी में लिखो त वधीक बहितर आहे। ऐं असदुल्ला चांडियो, नवीद चांडियो, अली मदद चांडियो, नज़ीर चांडियो, ग़ुलाम फरीद बिरोही ॻोठु मीराणी चांडियुनि खां, भाउ जी वॾी महिरबानी। वकार जतोई, अमीर हमज़ा जतोई, अफ़सार जतोई पीरशिर खां, भाइरनि जी वॾी महिरबानी। लख कुर्ब, ख़ूबसूरत नगमो आहे, अवां दोस्त नाम पिया कयूं।

साईं जा मोलेणे माशी खां ज़मीर हुसैन सोलंगी, मुख़्तार अली सोलंगी, ज़हीर अब्बास सोलंगी, ॻोठु कंगन खां गुलाब खान कुंभर ऐं ॻोठु हसूजतुनि खां मोहम्मद मूसा यार, मोहम्मद नसर लाइ जतोई, ॻोठु मोहम्मद कासिम चांडियो खां अली अकबर चांडियो ऐं ॻोठु छुटो खान मक्सी खां सिकंदर अली मक्सी, अकबर खान मक्सी ऐं यार मोहम्मद कलोड़ा कॉलोनी लाड़ेकाण खां फ़ौजी इरशाद अली महेसर।

जी असमिन प्रोग्राम रोशन सुबह जो वक्त पहुंचे पांजी पुजाणी ते हयाती रही तवां सां जरूर मुलाकात थींदी तेसी ताईं पांजे मेज़बान नेमतुल्लाह जूणे जो खेॾींदा इजाज़त अलाह निगहबान।

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: अब आप सुनेंगे GFM नेटवर्क पर KTN न्यूज़।

0: आज़ाद कश्मीर के आम चूंडन की पहरे मरहले में मीरपुर डिवीजन में पोलिंग जो अमल जारी। सुबह 8 वगे का शुरू थे पोलिंग, शाम 5 वगे तक जारी रही। पोलिंग स्टेशन बारह वोटर्स जो कतारू लगल। मीरपुर डिवीजन के टिन जिलन मीरपुर कोटली ए भंबर के 13 तकन ते 14,01,439 वोटर वोट जो हक इस्तेमाल कंदा। सिक्योरिटी इंतजाम इंतहाई सख्त, चैनी सूबन का 17,000 का वधिक पुलिस अहलकार मुकरर थियल। अमेरिका से गाल तैयार आयो। ईरान पाकिस्तान समेत साल्स मुल्क के आगाह कर छो। ईरानी परदेही तर्जुमान इस्माइल बकाई है तो पाकिस्तान ए कतर समेत साल्स मुल्क तेहरान ए वाशिंगटन विच में राबतन लाए फाल किरदार अदा कर रहा है। अमेरिका गाल दौरान टों भेरों हमलो कयो। ईरान दिफा लाए तैयार है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप हथियार के जखीरे में खोट वारे खबर के रद्द कर छो। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल से गालंदे डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका वट दुनिया की कें भी मुल्क हथियार जखीरो मौजूद है। अमेरिकी दिफाई सलाहतन बाबत गर्दिश कदड़ खबर में हकीकत ना है। अमेरिका ईरान पारा एक बे ते हमला रोकण बाद आलमी मार्केट में तेल सस्तो थे लगो। आलमी मार्केट में कच्चे ब्रेंड तेल के अगन में 5% का वधिक जी लात फी बैरल $91 थी वयो। अमेरिकी कच्चो तेल $84 फी बैरल वेकरो थे लगो। गुजरियल हफ्ते कच्चे तेल जो कीमतू $100 फी बैरल का वधी वयू हुई। भानसईदाबाद वेझो गुजरियल डी कत्ल थियल पीरसन के वारसन जो लाश रखी धरणो। खमीसो टालपुर के वारसन लाश रखी इंडस हाईवे ते धरणो हयो। जवाबदार गिरफ्तार करण जो मुतालबो। एक वण सिंध अमर के नाव केटीएन न्यूज ए कावस के सर के भरपूर मोट। सिंध के मौसमियाती तब्दीली के असर का बचाने लाए सिंध वासिन पारा वण लगाने जो सिलसिलो जारी। केटीएन न्यूज ए कावश पारा 31 जुलाई 2026 तीन वण पोखण जो सद डल है।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 03003385569। जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
3: अस्सलाम वालेकुम अदा।
4: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
3: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
4: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
3: न अदा?
5: यार आजकल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
3: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
4: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
3: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
5: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
4: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
6: 03013992836।
5: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
6: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तियाब आई
5: हाँ यचो मेहरान आयरन स्टोर नज़द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी
6: राब्ते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 03003204372
7: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है सुनते रहो जी एफ एम 94
8: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहराबपुर होंडा मोटरसाइकिल जोधपुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहराबपुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएम जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनिए थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहराबपुर राब्ते जे लाइ 03201800003

0: It's 11:15 a.m.
1: This time check is brought to you by White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan. खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, खरी रोड, मेहरापुर, 0300-338-5569।
2: अपना शहर, अपना घर, मेहरापुर, और मेहरापुर की आवाज GAFM 94।

0: पाकिस्तान की शान वादी।
1: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरापुर कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमण एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमबी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा ख़मीस जुमे छंछर आचर ऐं

0: گردے جی پتھری مسانے جی پتھری جو بغیر آپریشن جی کامیاب علاج کیو بنے تو گردن جو انفیکشن چہرے جو رنگ سانورو چہرے جی خارش فٹ فرڈیوں بارن میں قد جو نہ بدن مردن ای عورتن میں وزن جو نہ بدن انہن سبنی بیمارن جو کامیاب علاج کیو بنے تو رابطے لئے 0301-196-851
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज 100 सोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए नए बालों की निशोनुमा में मदद दे बालों को घना और सेहतमंद बनाए घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राबता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद खरी रोड मेहरापुर 03003385 69

कीजिए वेलकम बैक वंस अगेन. आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है और मुझे कहते हैं आरजे रुखसार. आपको मेरे साथ पूरी पूरी एक बजे तक का है जी. और आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं आप कॉल्स के थ्रू भी. तो कॉल करने के लिए 03000113488 इसके ऊपर कॉल कर सकते हैं. इसके अलावा आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं. सिंपली मैसेज करने के लिए अपना मोबाइल उठाइए, राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, SKR टाइप कीजिए, स्पेस दीजिए, मैसेज टाइप कीजिए, सेंड कीजिए 8881 पे. कॉमेंट करने के लिए हमारा फेसबुक पेज होगा www.facebook.com/GFM88 के पेज के ऊपर. लाइव ऑडियो स्ट्रीमिंग नहीं बल्कि पोस्ट आपको मिलेगी GFM88 के पेज के ऊपर. जिंदगी गुलजार है की पोस्ट. एंड वहां पे आप लोग मुझे कमेंट्स करके ज्वाइन कर सकते हैं. तो हमारा सेगमेंट है जी सुर लगाओ गाना सुनाओ, जिसमें आप कॉल करके एक अदद गाना सुनाएंगे और वो गाना उसी टाइम पे प्ले कर दिया जाएगा.

0: ओके जी, कॉल्स आप लोगों की लेना हम स्टार्ट कर रहे हैं 03001134888 के ऊपर. फर्स्ट कॉलर ऑन द ऑफ द शो. हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कॉल ड्रॉप. नेक्स्ट कॉलर. हेलो हेलो,
1: अस्सलाम
0: वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम, कौन कहाँ से
1: पहचानो?
0: स्मार्ट किशोर
1: जी.
0: इतने दिनों बाद वाकई स्मार्ट किशोर है.
1: लिख कर दूं?
0: सॉरी, आपकी आवाज थोड़ी कट-कट के आ रही है.
1: असल में क्या, आवाज आपकी वापस आती है.
0: अच्छा, आवाज
1: इस हिसाब से मुझे इतना समझ रहा हूँ कि मेरी आवाज बिल्कुल आपको क्लियर आ रही है.
0: हाँ, ये है कि आपकी आवाज अब मुझे क्लियर आ रही है. स्मार्ट किशोर कैसे, ठीक ठाक? इतने दिनों बाद कॉल कर रहे हैं. इतने दिन तक कहाँ थे आप?
1: मसरूफ था.
0: मसरूफ थे
1: जी.
0: जबरदस्त जबरदस्त. कोई गाना शाना लेकर आए? प्रोग्राम सुन रहे हैं आज?
1: पहले आप बताओ, मिस किया आपने?
0: एग्जैक्टली, मैं अपने सब लिसनर्स को बहुत मिस करती हूँ जो नहीं आते, और आप नहीं आए. डेफिनेटली हम सब ने आपको बहुत मिस किया. लिसनर्स ने आपको बहुत मिस किया, मैंने आपको बहुत मिस किया, आपके गानों को मिस किया. और अब हम यही सोच रहे हैं कि इस माँ किशोर अब क्या गाएंगे.
1: अच्छा, ये मुहाफिज का ओएसटी है.
0: अच्छा, और मैं मजे की बात बताऊँ आपको, मुहाफिज का ओएसटी ना मैंने क्यू करके रखा हुआ है. अभी मैं चलाने ही वाली थी. सीरियसली, अगर कोई कॉलर ना आता तब मैं ये गाना चला देती.
1: चलें ठीक है, फिर टाइम जाया नहीं करते.
0: ओके ओके.
1: जान जब तक फिदा नहीं होती, जाने जब तक फिदा नहीं होती, पूरी रस्में वफा नहीं होती, पूरी रस्में वफा नहीं होती.

0: बेवफा से वफा नहीं होती, बेवफा से वफा नहीं होती, जान जब तक फिदा नहीं होती।
1: ओके वेरी नाइस। और कुछ कहना है, किसी को डेडिकेट करना है?
0: थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।
1: थैंक यू। और

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान मेहरान की
1: खुशखबरी। क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज। एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राबता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 0300-338-5569। खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राबता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 0300-338-5569। खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजरी सफ ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03

0: 0033855569।
1: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चौक पर एतमाद, बा अख्तियार 3S डीलर, आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल, कंपनी जे मुकरर कल रेट ते दस्तियाब है। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज्ड जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए, जिन्हें में मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज्ड जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जैर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर, राप्ती जिलाए आसिम हुसैन आराई, 0307-359-2120।
2: अपना शहर अपना घर मेहरापुर, और मेहरापुर की आवाज GAFM 94।

0: आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: आज़ाद कश्मीर के आम चूंडन के पहरे मरहले में मीरपुर डिवीजन में पोलिंग जो अमल जारी। सुबह 8 वगे का शुरू थियल पोलिंग शाम 5 वगे ताई जारी रहंदी। पोलिंग स्टेशन बारा वोटर्स जो कतारू लगल। मीरपुर डिवीजन के टिन जिलन मीरपुर कोटली ए भंबर के 13 तकन ते 14,1,439 वोटर वोट जो हक इस्तेमाल कंदा। सिक्योरिटी इंतजाम इंतहाई सख्त। चैनी सूबन का 17,000 का वधीक पुलिस एहलकार मुकर्र थियल।

0: खिते में दहशतगर्दीअ जो सभ खां वॾो सरपरस्त आहे अदम इस्तेकाम जो ज़िमेवार आहे दिफ़ा वारे वज़ीर ख़्वाजा आसिफ भारती वज़ीर राजनाथ सिंह जे बयान खे रद्द कंदे चयो आहे त भारत जे जारहाणनि क़दमनि सबबु खितो यर्गमाल आहे भारतीय वज़ीर जे बयानबाज़ी बिगड़ती जोॻी आहे जेका ख़तरनि खे वधीक वधाए रही आहे अमेरिका सां ॻाल्हियुनि लाइ तयार आहियूं ईरान पाकिस्तान समेत साल्स मुल्कनि खे आगाह करे छॾियो अरब मीडिया जे रिपोर्ट मूजिबि ईरान पाकिस्तान खे आगाह कयो आहे तेहरान वॉशिंगटन सां इस्लामाबाद दोहा या जेनवा में ॻाल्हियूं करण लाइ तयार आहे ईरानी परॾेही तर्जुमान इस्माइल बकाई चयो आहे त पाकिस्तान ऐं कतर समेत साल्स मुल्क तेहरान ऐं वॉशिंगटन विच में राब्तनि लाइ फाल किरदार अदा करे रहिया आहिनि अमेरिका ॻाल्हियुनि दौरान टियों भेरो हमिलो कयो ईरान दिफ़ा लाइ तयार आहे अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप हथियारनि जे ज़खीरे में खोट वारनि ख़बरनि खे रद्द करे छॾियो अमेरिकी अख़बार वॉल स्ट्रीट जर्नल सां ॻाल्हाईंदे डोनाल्ड ट्रंप चयो त अमेरिका वटि दुनिया जे कंहिं बि मुल्क खां वधीक हथियारनि जो ज़खीरो मौजूदु आहे अमेरिकी दिफ़ाई सलाहियतनि बाबति गर्दिश कंदड़ ख़बरुनि में हक़ीक़त नाहे पेंटागोन ईरान ख़िलाफ़ जंग में 18 फ़ौजियुनि जे मारजण जी तस्दीक करे छॾी 200 खां वधीक ज़ख़्मी ईरान ख़िलाफ़ जंग में मारिजी वियल वधीक 4 फ़ौजियुनि जा नाला लिस्ट मां ग़ाइब अमेरिकी ख़बरु इदारे मूजिबि गुज़िरियल हफ़्ते पेंटागोन जंग दौरान मारिजी वियल 4 फ़ौजियुनि खे लिस्ट मां हटायो आहे नाला हटाइण जो को बि कारण नाहे ॿुधायो वियो अमेरिका ऐं ईरान पारां हिक ॿिए ते हमला रोकण बाद आलमी मार्केट में तेल सस्तो थियण लॻो आलमी मार्केट में कचे बैरल तेल जे अघनि में 5% खां वधीक जे लात फी बैरल $91 थी वियो अमेरिकी कचो तेल $84 फी बैरल विकिरो थियण लॻो गुज़िरियल हफ़्ते कचे तेल जूं क़ीमतूं $100 फी बैरल खां वधी वियूं हुयूं वफ़ाक़ी घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी जे लाहौर में मंसूर अहमद जमात इस्लामी जे अमीर हाफिज़ नईम सां मुलाक़ात अमीर हाफिज़ जे लाॾाणे ते फातिहा ख़ानी करे ॾुख जो इज़हार कयो ॿिन्ही अॻवाननि मुलाक़ात दौरान मुल्की सियासी सूरतहाल ते ॻाल्हि ॿोल बि कई कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद जी शहादत खे 78 साल मुकमल थी फील्ड मार्शल ऐं ॿियनि पारां भेट आपेश सदर आसिफ़ ज़रदारी चयो आहे त कैप्टन सरवर शहीद कश्मीर जी आज़ादीअ लाइ ज़िंदगी क़ुर्बान कई वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ चयो त समूरे क़ौम शहीद खे भेट आपेश करे थी मान सईदाबाद वेझो गुज़िरियल ॾींहुं क़तल थियल पीरसन जे वारसनि जो लाश रखी धरणो खमीसो टालपुर जे वारसन इंडस हाईवे ते लाश रखी धरणो आयो पीरसन जे क़तल में मुलविस जवाबदार गिरफ़्तार करण जो मुतालबो पीरसन खमीसो टालपुर खे गुज़िरियल ॾींहुं पुराणे तकरार तां क़तल कयो वियो हो सेठारजा में ॻोठाणनि जो पुलिस ऐं बासरनि ख़िलाफ़ औरतनि समेत पाक किताब खणी धरणो ॻोठ सबर खां रिंद जे रहवासी नाका चौक ते धरणो हणी पुलिस ख़िलाफ़ नारेबाज़ी कई ॻोठाणनि जो चवणु आहे त ज़मीन जे तकरार तां ॻोठ ख़ुदा बख़्श सुमरो जे बासरनि घरनि ते हमिलो करे फायरिंग कई बोज़दार वॾा पुलिस औरतनि ऐं मर्दनि समेत 10 माण्हुनि मथां कूड़ो केस दाख़िल कयो आहे बासर हिरासां करे कूड़ा केस दाख़िल कराए रहिया आहिनि नोटिस वठी इंसाफ़ कयो वञे
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
2: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिं में मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर राबते जे लाइ 03201800003
3: खुशखबरी अपनी जिल्द को दे नई ताजगी चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ अब फिक्र छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार फेशियल रेजुविनेशन साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर नोट खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं पता रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नजद रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 03003385699

0: ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फ़ौजी ॿाहिरनि लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी। राब्ते लाइ फ़ौजी अब्दुल करीम 0301-5431-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793।
1: अस्सलाम वालेकुम अदा।
2: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
1: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो, छा कजे?
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई अथई?
1: न अदा।
0: यार अॼुकल्ह शहरनि तोड़े गोठनि में जीअं मीरापुर FM 94 ई हले थो, मूं पंहिंजो दुकान खोलियो त FM मीरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार अहिड़ो कामयाब वियो जो एड बंद कराइण ते दिल्ली नथी चवे।
1: मुंहिंजे दुकान जी भेट हलंदी?
2: हा अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मीलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइज़िंग हलंदी।
1: अदा जल्दी कर, मुख्य मुझी एड्रेस तो बुधा।
0: ऑफिस जी मीरापुर FM 94, नर्स गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालानी रोड, मीरापुर।
2: राबते लाइ हाकिम अली जिस्कानी
3: 0301-399-2836।
4: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो जी FM 94।

0: It's 12:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Diya Josho. A product by Biocon International Pakistan. खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, खरी रोड, मेहरापुर, 03003385369।

कॉल्स आप लोगों के लेंगे हम 03000113488 के ऊपर और देखेंगे कि आज का तंगटशक कौन सही सही और अच्छा अच्छा कह पाता है. सो हियर कम्स द फर्स्ट कॉलर. अगर तुम्हें रिसीव कर

0: 3 4 1 3 4 8 के ऊपर आप लोगों की बहुत सारी लाइव कॉल्स को एंटरटेन किया जा रहा है, साथ साथ आप लोगों के कमेंट्स और मैसेजेस की तरफ भी हम मूव करेंगे. एंड हमें चुन किया है जी मंजर महमूद मंजर ने, और कहते हैं कि जी अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. और इसके अलावा जी कहते हैं कि जी नज़ीर खोजो हमारे से मौजूद हैं सोबतपुर बलूचिस्तान से, थैंक यू सो मच. और इस वक्त हमें और भी बहुत सारे मैसेजेस रिसीव हो चुके हैं आप लोगों के. तो उस्ताद अहमद बख्श वसीर हमें सुन रहे हैं विलेज डिंगल खान वसीर से इठारजा से. प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है, आप मेहनत कर रही हैं, थैंक यू सो मच. और आपका बहुत बहुत शुक्रिया. और इसके अलावा जी आप ट्यूनिंग किए हुए हैं. अच्छा कॉलर्स आना शुरू हो चुके हैं, कॉल्स लेते हैं. हेलो हेलो वालेकुम अस्सलाम. कौन कहाँ से? हाफिज लखमीर फ्रॉम मोरो. भाई प्रोग्राम सुन रहे हैं, टंग टोस्टर बोलेंगे? अच्छा मैं बताऊं तो बोलेंगे? आपने कहना है टप टप टपके टपकता टपका, टपकते टपके से टपका टपका.
1: क्या टप टप टप टप?
0: आपने कहना है टप टप टपके टपकता टपका, टपकते टपके से टपका टपका.
1: टप टप टपके टपकता टपका, टपके टपके से
0: टपकते टपके से टपका टपका. कहे ना, नहीं आएगा. चलें कुछ और कहेंगे. ओके जी, डर के मारे कॉल काट दी. वेरी बैड. डरने की क्या जरूरत थी, जबरदस्ती थोड़ी कहलवाती आपसे. अच्छा नेक्स्ट कॉलर. हेलो
2: हेलो अस्सलाम
0: वालेकुम अस्सलाम. कौन कहाँ से?
2: जी मैं वकार लाड़काना.
0: वकार लाड़काना से. कैसे भाई, ठीक ठाक है?
2: खैर खैरियत. रुखसार भाई आप सुनाए आपके.
0: रुखसार भाई बिल्कुल ठीक है, मुझे बताएंगे टंग ट्विस्टर सुनाए बोलेंगे.
2: जी जी सुना है लेकिन दुखिया है ना.
0: दुखिया है, थोड़ा सा कोशिश तो करें.
2: बरसा पानी.
0: नहीं नहीं बरसात तो है ही नहीं इसमें, किधर से ला रहे हैं बरसात? टिप भी नहीं है, टप टप है. टप टप टपके टपकता टपका, टपकते टपके से टपका टपका.
2: टपके नहीं भाई, निराश नहीं.
0: चलें कुछ और कहेंगे.
2: हेलो
0: जी जी कुछ और कहेंगे.
2: जी जी मूसा गड मुझे नंदिड़ी प्रोग्राम दे बुदे नाला खड़ा हूँ.
0: हाँ जी बिल्कुल ले सकते हैं, ले लें.
2: आसिया डॉक्टर आसिया फातिमा जोया अफसार अमीर के तानी पूरी टीम के सलाम. गाना तो बुद रहे.
0: गाना कौन सा सुनेंगे?
2: गाना ताला नवी का सुनाओ, बेवफा यूं तेरा मुस्कुराना भूल जाने के
0: काबिल. चले ठीक है, थैंक यू सो मच. ओके अल्लाह हाफिज, थैंक यू. और इसके अलावा जी हम प्ले कर रहे हैं एक अदद गाना, गाने के साथ कंटिन्यू करेंगे सेगमेंट को. स्टे ट्यून्ड.

0: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज, एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385569।
1: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन, मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, शानदार तालीमी इमारत, प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन, एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकाद, मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला, सरसब्ज बागीचा, बेहतरीन फर्नीचर, शानदार कंप्यूटर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स, ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जो, एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिले तहसीन नतायज, खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले, तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले, स्टडी टूर्स, अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन, मैनेजिंग डायरेक्टर मजर स्कूल सिस्टम, 03000027234, निसार अहमद मेमन प्रिंसिपल मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, 03013865453।
0: खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम, हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ए जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवां जी स्किन के बनाए निखरी ए चमकदार, सिर्फ बिन डीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म, ए डीए कुदरती असली ग्लो, डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डीह जो शो, अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड,
3: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तियाब आई
2: हाने यचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी।
3: राब्ते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल, 03003204372 आई 02424601000।
4: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेहरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर, डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमबी इस्लामाबाद, होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह, हर अरबा खमीस जुम्मे छंछर आचर।

0: वठनी पवंदी मायरे अमराज नक कन गलो पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-9196-851
1: अस्सलाम वालेकुम अदा
2: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
1: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
1: न अदा
3: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर एफएम 94 ही हले थो मु पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
1: मुजे दुकान जी बे डरंदी
2: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी
1: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
3: ऑफिस जी ए मेरापुर एफएम 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर राबते लाए मंसूर अहमद मेमन 0301-380-8347
4: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी एफएम 94

0: ओके जी, वेलकम बैक वंस अगेन. आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है, और मुझे कहते हैं आरजी रुक्सा है आपका और मेरे साथ पूरी पूरी एक बजे तक का है, और आप लोग मुझे ज्वाइन कर रहे हैं बोलो तो मानी सेगमेंट में. एंड हियर कम्स द नेक्स्ट कॉलर जो कि हम लेने जा रहे हैं. हेलो
1: हेलो
0: हेलो, अस्सलाम वालेकुम. कौन बात कर रहे हैं?
1: सफदर
0: बलोच मोरो से.
1: जी,
0: टंग ट्विस्टर सुना है? बोलेंगे सुना है,
1: अलग मुश्किल है, नहीं आएगा.
0: अच्छा, तो बोलेंगे टंग ट्विस्टर?
1: नहीं बोल पाऊंगा.
0: नहीं बोल पाएंगे? अरे ये तो आप सही नहीं कर रहे.
1: मुश्किल है ना.
0: चले, और कुछ कहना चाहते हैं? और कुछ कहेंगे? कहें
1: मुझे गला सुना दो.
0: चले, मैं हम आपको जरूर सुनवाते हैं. थैंक यू, अल्लाह हाफिज. 03000-1134-88. एक और कॉलर ट्राई करेंगे. हेलो,
2: अस्सलाम वालेकुम. या अली मदद.
0: सलाम. कौन कहाँ से?
2: जब तक बिका ना था कोई पूछता ना था, तूने खरीद के मुझे अनमोल कर दिया. आपने जागदानी का सलाम है मोहब्बत.
0: वालेकुम अस्सलाम. वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल?
2: अल्हम्दुलिल्लाह. ये सूरत इलाही किस लेस बस्तियाँ हैं, अब जिनके देखने को और आंखें तरसतियाँ हैं. ये कैसे अब्बा पर इनके और में आज चलाना है मेरी कॉल के बाद. अब मुझे कहते हैं पहरा जमाने वाले, जब तो खुद गूंगे थे आवाज लगाने वाले. मेरी कीमत न लगा पाया खरीदार कोई, बिक गए खुद मुझे बाजार में लाने वाले. ये जमाना भी जमाना तो वही है, लेकिन बस यहाँ लोग नहीं है वो पुराने वाले.
0: अरे वाह क्या बात है.
2: बस यहाँ लोग नहीं है वो पुराने वाले, तो जो प्यार करते थे. अब रे पीछे वाली बेटा आगे लग गई है, रुपया फर्क ही आ गया है. अच्छा. ये जमाना भी जमाना तो वही है, लेकिन बस यहाँ लोग नहीं है पुराने वाले. इस भरोसे पे अदालत में भला जाए कोई, खुद ही मुजरिम हूँ जब इंसाफ दिलाने वाले.
0: अरे
2: शायद इस रास्ते में, शायद इस रास्ते में तुमको नहीं भूल सका. शायद इस रास्ते में तुमको नहीं भूल सका. याद रहते हैं बुलाने वाले. दोस्ती उनसे रही मेरी समंदर की तरह, उससे करते रहे आग लगाने वाले. आज वो लोग मेरे रक्त का मरहम है नकी, कल तलक मुझ पे थे तलवार चलाने वाले. ये आपने अल्ताफ बलो जागजानी का सलाम है मोहब्बत कबूल, और पंतन पाक के साय में रहो बेटी. अल्लाह तुझे अपने अमान में रखे.
0: थैंक यू सो मच, बहुत सारा ख्याल रखें अपना. अल्लाह हाफिज. और ये थे स्वीट कॉलर जाग जानी अंकल. और इसी के साथ हम चलते हैं जी आगे, और बहुत सारे मैसेजेस और कमेंट्स भी आप लोगों के मुझे रिसीव होते जा रहे हैं. सो हम गाने की तरफ चलेंगे, एक गाना प्ले करेंगे, एंड देन हम जो है ना कंटिन्यू करेंगे अपने सेगमेंट्स को. सो हियर कम्स द सॉन्ग, द ब्यूटीफुल सॉन्ग. इसको सुनेंगे, एंजॉय करेंगे और आगे चलेंगे.

0: जीए सखर FM 88
1: सखर की आवाज
2: छा तवाजो ख्वाब आए डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी नर्स

0: अभी जो लास्ट में वापस आ चुके हैं एंड हमें बहुत सारे कमेंट्स और मैसेजेस रिसीव हो रहे हैं. आप कॉल्स हम आप लोगों की लेते हैं और लास्ट लकी कॉलर्स भी लेने हैं. और आज का टंग ट्विस्टर जो कि अभी तक कोई नहीं कह पाया, इतना टफ टंग ट्विस्टर. चेक करते हैं जी एक और कॉलर. हेलो,
1: हेलो, अस्सलाम वालेकुम.
0: वालेकुम अस्सलाम. कौन कहाँ से?
1: आपसे पहले लाड़काना से आपका शो प्यारा सुन रहा हूँ.
0: ओके, टंग ट्विस्टर बोलेंगे.
1: आपका टंग दुखिया है?
0: इतना दुखिया नहीं है, बोल के तो देखें.
1: इंशाल्लाह कल वाला बोलेंगे, आसान नहीं है.
0: कल वाला बोलेंगे. ओके, अभी कुछ और कहना है, कुछ बोलना है?
1: मेरे दोस्त सुन रहे हैं वाकिफ अली बुक्की, आपका शो जबरदस्त चल रहा है.
0: ओके, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़. और टाइम बहुत लिमिटेड है, जल्दी जल्दी चलेंगे आगे. एंड हमें कॉमेंट रिसीव हुए हैं जी. आदिल हुसैन का कॉमेंट आया है, हाय हाउ आर यू रुखसार, ठीक हूँ. अच्छा, नौरंग अली हमें सुन रहे हैं, हालानी से आपका प्रोग्राम सुन रहा हूँ. सुन रहे हैं, क्या वजह है? अच्छा, इसके अलावा गुलाम मोहम्मद मरी बलोच हमें सुन रहे हैं, आई एम लिस्निंग टू योर शो एट होम, योर शो इज ग्रेट. और मीरपुर खास से ही हमें सुन रहे हैं जी, थैंक यू. और रियाज मेहर हमें सुन रहे हैं, रियाज मेहर सीए सलाम जी, वालेकुम अस्सलाम रियाज मेहर. और जाग जानी अंकल कहते हैं कि प्लीज प्ले सूरतें, ये किसका गाना है? चले हम इसको सर्च करते हैं, और मेरे पास 5 मिनट हैं, और अगर तो ये मुझे मिल गया तो मैं प्ले करूंगी. और डेडिकेशन से जी बिस्मिल अजरा खोसो और मुझे. ओके जी, अगर मुझे ना भी मिला तब भी हम लास्ट वाला सॉन्ग जो है ना, बिस्मिल अजरा खोसो और मुझे डेडिकेट कर देंगे हम, ठीक है? मैं खुद डेडिकेट करूंगी. क्या ख्याल है, लास्ट लकी कॉलर ले, 03000113488. आज पता नहीं क्यों मुझे टाइम शो का बहुत ऐसा लगा है कि पता नहीं शो मैंने किया है या नहीं किया मजाक को. पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि बहुत कम टाइम था मेरे पास, जबकि टाइम उतना ही था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि टाइम कम था. अच्छा, नेक्स्ट एंड लास्ट कॉलर. हेलो,
2: अस्सलाम वालेकुम.
0: वालेकुम अस्सलाम. कौन कहाँ से? सॉरी, नाम बताएं.
2: कशिश.
0: कशिश बात कर रही है, कहाँ से?
2: मोरो से.
0: कशिश, कशिश पहली दफा कॉल कर रही है?
2: जी
0: हाँ. ओके, कशिश प्रोग्राम सुनती है?
2: यस.
0: कैसा लगता है?
2: बहुत अच्छा है.
0: बहुत अच्छा है. ओके, मुझे बताएं आज की अच्छी बात क्या है?
2: आज की अच्छी बात है, किसी को दुख ना दे और दिया है तो फिर माफी मांगे.
0: ओके, दिया है तो फिर माफी मांगे, वेरी वेल सेड. और कुछ कहना है कशिश?
2: जी हाँ.
0: बोले,
2: आप टंग ट्विस्टर पूछना चाहते थे?
0: टंग ट्विस्टर बोलना है?
2: यस.
0: बोले, जल्दी जल्दी से बोले.
2: एक मरतबा
0: आप, एक मरतबा मैं बताऊं? ओके, मैं बताती हूँ आपको. आज का टंग ट्विस्टर कुछ इस तरह से था कि टप टप टपके टपकता टपका, टपकते टपके से टपका टपका. वेरी नाइस.
2: बताओ ना.
0: नहीं, काफी है इतना, और मुझे लगता है कि मैं जितना बोलूंगी आप उतना कह भी देंगे, लेकिन टाइम नहीं है हमारे पास. सो थैंक यू सो मच कशिश, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. ओके, अल्लाह हाफिज जी. और हम क्या करेंगे, हम लास्ट में प्ले करेंगे लास्ट सॉन्ग. अच्छा, मेरे पास लास्ट में ना 2 सॉन्ग्स, और मैंने सोचा था कि मैं लास्ट में ये दोनों ही प्ले करूंगी, लेकिन अब इसमें से चूज करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है कि कौन सा प्ले किया जाए. क्योंकि मैं जा रही हूं तो मुझे लगता है कि एक तो गाना ये है, सफर भाई बयान, इसी को चला देते हैं जी. और लास्ट में इसी के साथ हम प्रोग्राम को रैप अप करेंगे. इंशाल्लाह मेरी आपसे चिटचैट होगी कल ऑन सेम टाइम सेम चैनल सेम शो विद द सेम आरजी, सुनना मत भूलिएगा. जिंदगी गुलजार है अपना, बहुत सारा ख्याल रखिएगा. सो दिस इज मी आरजी रुखसार, साइन आउट, टेक केयर, गुड बाय, अमाने खुदा, अल्लाह हाफिज.
3: कहते हैं सब मगर

0: थियल आहिनि। भारत खिते में दहशतगर्दीअ जो सभ खां वॾो सरपरस्त आहे ऐं अदम इस्तेकाम जो ज़िमेवार आहे। दिफ़ा वारे वज़ीर ख़्वाजा आसिफ भारती वज़ीर राजनाथ सिंह जे बयान खे रद्द कंदे चयो आहे त भारत जे जारहाणनि क़दमनि सबबि खितो यरगमाल आहे। भारतीय वज़ीर जे बयान बाज़ी बि ॻणती जोगी आहे जेका ख़तरनि खे वधीक वधाए रही आहे। अमेरिका सां ॻाल्हियुनि लाइ तयार आहियूं। ईरान पाकिस्तान समेत सार्स मुल्कनि खे आगाह करे छॾियो। अरब मीडिया जी रिपोर्ट मूजिब ईरान पाकिस्तान खे आगाह कयो आहे। पाकिस्तान ऐं कतर समेत सार्स मुल्क तेहरान ऐं वाशिंगटन विच में राब्तनि लाइ फाल किरदार अदा करे रहिया आहिनि। अमेरिका ॻाल्हियुनि दौरान टियों भेरो हमिलो कयो। ईरान दिफ़ा लाइ तयार आहे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप हथियारनि जी ज़खीरे में कोर्ट वारनि ख़बरनि खे रद्द करे छॾियो। अमेरिकी अख़बार वॉल स्ट्रीट जर्नल सां ॻाल्हाईंदे डोनाल्ड ट्रंप चयो त अमेरिका वटि दुनिया जी कंहिं बि मुल्क खां वधीक हथियारनि जो ज़खीरो मौजूदु आहे। अमेरिकी दिफ़ाई सलाहियतनि बाबति गर्दिश कंदड़ ख़बरनि में हक़ीक़त नाहे। पेंटागॉन ईरान ख़िलाफ़ जंग में 18 फ़ौजियुनि जे मारिजण जी तसदीक करे छॾी। 200 खां वधीक ज़ख़्मी। ईरान ख़िलाफ़ जंग में मारिजी वियल वधीक 4 फ़ौजियुनि जा नाला लिस्ट मां ग़ाइब। अमेरिकी ख़बरू इदारे मूजिब गुज़िरियल हफ़्ते पेंटागॉन जंग दौरान मारिजी वियल 4 फ़ौजियुनि खे लिस्ट मां हटायो आहे। नाला हटाइण जो को बि कारण नाहे ॿुधायो वियो। अमेरिका ऐं ईरान पारां हिक ॿिए ते हमला रोकण बाद आलमी मार्केट में तेल सस्तो थियण लॻो। आलमी मार्केट में कचे बैरल तेल जे अघनि में 5% खां वधीक जी लात फी बैरल $91 थी वियो। अमेरिकी कचो तेल $84 फी बैरल विकिरो थियण लॻो। गुज़िरियल हफ़्ते कचे तेल जूं क़ीमतूं $100 फी बैरल खां वधी वियूं हुयूं। सिक्योरिटी फोर्सेज़ जे ऑपरेशन दौरान गिरफ़्तार दहशतगर्द जा हिंदुस्तानी फितने बाबति छिरकाईंदड़ इंकशाफ़। रुगो 25,000 ते बलोच नौजवाननि खे क़तल करण जो बि एतिराफ़। दहशतगर्द हबीबुल्ला चयो आहे त दहशतगर्द तनज़ीम पैसनि जी लालच ॾेई भर्ती कयो। दहशतगर्दी जी तरबियत बि ॾिनी वई। हमलनि बाद सुञाणप लिकाइण ऐं फरार थियण जा गुर बि सेखारिया विया। रुगो 25,000 एवज़ पंहिंजे बलोच भाइरनि जे रत सां पंहिंजा हथ रंगिया। दहशतगर्द तनज़ीम छॾींदड़ खे मारियो वेंदो आहे। सिंध जूं सरकारी अस्पतालूं HIV पखेड़ जो सबब बणजण लॻियूं। गिम्स वलीका ऐं लांडी जे सोशल सिक्योरिटी अस्पताल बाद कराची जे सभ खां वॾे ॿारनि जे अस्पताल NICH इलाज लाइ आयल ॿारनि जे HIV में मुबतला हुअण जे तस्दीक ज़रियनि मूजिब सिंध जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि मां इलाज लाइ NICH आंदल ॿारनि जा टेस्ट कराइण दौरान केतिरनि ई ॿारनि में HIV जी तस्दीक थी आहे। कराची जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि मां इलाज लाइ NICH आयल ॿारनि में HIV जी तस्दीक थी आहे। ॿारनि जो अंग 50 आहे। वफ़ाक़ी घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी जे लाहौर में मंसूर अहमद जमायत इस्लामी जे अमीर हाफिज़ नईम सां मुलाक़ात। अमीरुल ज़ईम जे लाॾाणे ते फातिह ख़्वानी करे ॾुख जो इज़हार कयो। ॿिन्ही अॻवाननि मुलाक़ात दौरान मुल्की सियासी सूरतहाल ते ॻाल्हि ॿोल बि कई। कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद जी शहादत खे 78 साल मुकमिल थी विया। शहीद खे सदर वज़ीर आज़म फील्ड मार्शल ऐं ॿियनि पारां भेटा पेश। सदर आसिफ ज़रदारी चयो आहे त कैप्टन सरवर शहीद कश्मीर जी आज़ादीअ लाइ ज़िंदगी क़ुर्बान कई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चयो त समूरी क़ौम शहीद खे भेटा पेश करे थी। भान सईदाबाद वेझो गुज़िरियल ॾींहुं क़तल थियल पीसनि जे वारसनि जो लाश रखी धरणो। खमीसो टालपुर जे वारसन इंडस वे हाए ते लाश रखी धरणो हयो। पीरसन जे कतल में मुलविस जवाबदार गिरफ़्तार करण जो मुतालबो। पीरसन खमीसो टालपुर खे गुज़िरियल ॾींहुं पुराणे तकरार तां क़तल कयो वियो हो। खैरपुर नाथन।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: माशाला फौजी पाइप फैक्ट्री नर्स गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मैरापुर असा वट जगह जो डारियो जगह जा पावा आई पाइप डेढ़ ब चार छह नव आई बारह इंच में प्लेन आई कॉलम में मौजूद आहिन। फौजी भाइरन लाए खुसूसी रियायत हुंदी। राबते लाए फौजी अब्दुल करीम 0301-54-4456 आई तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
3: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पेंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जैमे मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनिए थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर राबते जे लाए 0320-18-00-003।
4: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। 0300-338-5569।
3: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलस होंडा मोटरसाइकिल जो पर एतमाद आई बा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राबते जिलाए आसिम हुसैन आराई 0307-359-2120।
5: अस्सलाम वालेकुम अदा।
6: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
5: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
6: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
5: न अदा।
7: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जीए मेरापुर FM 94 ही हले थो। मो पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
5: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
6: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
5: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
7: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
6: राबते लाए हाकिम अली जिस्कानी
8: 0301-399-2836।
9: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

फतेह शेर खरोजी फरमाश ऐं वहाब जमाली हसीब जमाली ऐं मिस्त्री वाहिद बख्श सरकी ऐं इश्फाक अहमद सरकी नवीद सरकी ऐं सोराब मीराणी फरमाश ऐं हैरदीन सरकी जी फरमाश ऐं शबीर चाचड़ जी फरमाशा ऐं अब्दुल रज़ाक सुमरे जी फरमाश ऐं शौकत जमाली लियाकत जमाली

0: It's 1:15 p.m.
1: This time check is brought to you by White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan. खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल, गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 0300-338-5569।
2: अपना शहर, अपना घर, मेहरापुर, और मेहरापुर की आवाज़, GAFM 94।

0: ओके दी, तो ये तीनों काम कीजिए, उसके बाद हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनते जाइए। और मुझे बताइए कि अगर जानवरों के पास मोबाइल फोन होता तो सबसे ज्यादा रील्स किस जानवर ने बनानी थी? हाँ जी बताइए जरा। और साथ ही अगर आप व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स आपके एरिया में मिल रहे हैं नहीं, ये चीज जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराना चाहते हैं तो उसका हल भी बताएंगे कि कैसे अवेलेबल कराएंगे। और अगर व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आप लोगों के साथ प्रोडक्ट्स की बात की जाए तो बहुत ही ज्यादा तगड़े किस्म के प्रोडक्ट्स ये हैं जो कि व्हाइटिश वालों ने तैयार कर लिए हैं आप लोगों के हुस्न के मुताबिक, आप लोगों की स्किन के मुताबिक। अगर आप भी खूबसूरती में जरा सीरियस हो चुके हैं, खूबसूरती हासिल करना चाहते हैं तो व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल मस्ती जनाब लाजमी करके देखें, आपको मजे आ जाएंगे। और ऐसा नहीं कि भाई आप प्रोडक्ट इस्तेमाल करते रहें तो खूबसूरती मिलेगी, छोड़ दें तो फिर खूबसूरती भी चली जाएगी, ऐसा कोई सीन नहीं बनेगा। इस्तेमाल कीजिए और अपनी खूबसूरती को लॉक कीजिए क्योंकि आप हमेशा के लिए खूबसूरत हो चुके होंगे। इस्तेमाल कीजिएगा व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो या फिर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो, तफसील आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन साथ साथ यहाँ पर आदिल हुसैन हमें ज्वाइन कर चुके हैं। वालेकुम अस्सलाम, कहते कैसी हैं, मैं ठीक, आप बताएं। देखते हैं कि हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। ओके, और गाना ओके में कोशिश करूंगी, लगाएंगे आपका गाना। नजीर खोसों में सुन रहे हैं बलूचिस्तान से। लिखते हैं कि अल्फाज इंसान की असल पहचान में, अल्फाज सिर्फ बोले नहीं जाते बल्कि इंसान की शख्सियत, सोच और तरबियत का आईना होते हैं। नरम लहजा और अच्छे अल्फाज दिल जीत लेते हैं जबकि सख्त अल्फाज बरसों के रिश्ते तोड़ सकते हैं। हम आम फहम सही मगर सादा लोग हरगिज नहीं। ओके जी, बहुत बेहतरीन। और हैप्पी गर्ल कहती है हेलो अस्सलाम वालेकुम माय स्वीट आरजे केसिया, शो तो वेरी नाइस है और शो के साथ साथ हैं आप भी। अच्छा, शो के साथ साथ मतलब मैं भी नाइस हूँ, थैंक यू। अखलाक भाई हमारे साथ ही, वालेकुम अस्सलाम अखलाक भा चाला। अमान मियो हमारे साथ, वालेकुम अस्सलाम अमान भाई, कैसे हैं, ठीक ठाक है। हजार खन जदो हमें सुन रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम। अदी सिद्रा मुस्कान, आप कैसी हैं, शो लाजवाब जबरदस्त बेहतरीन माशाल्लाह हमेशा की तरह, थैंक यू सो मच प्यारे भाई, आप बताएं कैसे हैं, ठीक ठाक है। कहते हैं कि हम भी आपके साथ साथ हैं, गुड शो, थैंक यू जी। मुश्ताक अहमद कुंभर हमारे साथ ही, वालेकुम अस्सलाम। सिद्रा बाजी आप कैसी हैं, सिद्रा बाजी बहुत अच्छी, आप बताएं आप कैसे हैं। आमिर अली कहते हैं मैडम आदिल ओके जी। और आगे बढ़ते हैं तो आगे हमारे साथ मुश्ताक अहमद कुंभर भाई कहते हैं आपके शो की क्या बात करें जी, शो ब्यूटीफुल है, नाइस है, लेकिन जब आप व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करेंगे तो आपको और ज्यादा मजे आ जाएंगे। तो व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करके देखें ताकि आपकी खूबसूरती और ज्यादा बढ़ती रहे। अच्छा, किशोर भाई कहते हैं सलाम अदा की आयो, खुश आयो, पैंजी मस्ती में मस्त, असा पैंजी मस्ती में मस्त आयो, थाम बुधाया की आयो। और अली मुर्तजा कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, सलाम मंझन जो, हाउ आर यू मंझन जो, वालेकुम अस्सलाम, ये सफा ठीक है, ताम बताया किया हो। और किशोर भाई कहते हैं टॉपिक बंदर, वैसे भी एआई वालों ने बंदर की रील ज्यादा बना रखी है। हाँ भाई, वो आजकल कितना चल रहा है मैं वो बाद में बताती हूँ। अच्छा, ये तो मेरे, अगर मैंने सोचा ना ये सवाल पूछने का तो मेरे जहन में सबसे पहले बंदर का ख्याल आया था, लेकिन मैंने सोचा देखें भाई हमारे लिसनर्स क्या कहते हैं। एक तो चले बंदर लॉक हो गया, बाकी दूसरे देखते हैं कि उनका क्या जवाब आता है इस टॉपिक के ऊपर। तो आप मुझे बताएं कि अगर जानवरों के पास भी फोन आ गया, उनके पास भी फोन हुआ, तो मुझे बताएं कौन सा जानवर जो कि सबसे ज्यादा रील्स बनाने वाला है, जल्दी बताइए और हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनते जाइए। टाइम की जानब देखा तो हुआ चाहता है जनाब शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की जानब जाने वाला, तो शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, उसके बाद जल्दी वापसी आप लोगों के पास आते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ मौजूद रहना है। मैं जरा यूं जाकर यूं वापस आती हूं, सो स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग व्हाइटिश एंड डी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। लगाते रहिए और खूबसूरतियां हासिल करते रहिए।
1: जीए एफएम 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: क्या आप आसाबी दर्द, जोड़ों की तकलीफ,
3: कमर दर्द या पट्टों की सूजन से परेशान हैं?
2: अब दर्द को कहें अलविदा
3: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट के साथ।
2: जी हाँ,
3: फकीरी मरहम बनाने वालों
4: खुशखबरी। क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज, एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385569।
5: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीट्स और जदीद माइक्रो बीट्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।

0: पुराणो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट ॿुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज़ फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज़ हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियूं ॿारनि में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-851
1: अस्सलाम वालेकुम अदा
2: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
1: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
1: न अदा
3: यार आज कल शहरन तोड़े गोछन में जी मेरापुर FM 94 ही हले थो मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
1: मुझे दुकान जी बेड हलंदी
2: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी
1: अदा जल्दी कर मुखे मुंजी एड्रेस तो बुदा
3: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर
2: राबते लाए हाकिम अली जिसकाणी
4: 0301-399-2836
3: आई मोहम्मद उमेर गोरी 0319-1557-724
5: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी FM 94

कि ये वाइट एज वालों की फेयरनेस क्रीम है. ओके जी, वाइट एज की जो फेयरनेस क्रीम है ना, वाइट एज लवली करके इसका नाम है, वाइट एज लवली क्रीम. और वाइट एज लवली क्रीम जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो फेयरनेस क्रीम है ना, ये सब फेयरनेस क्रीमों से थोड़ी मुख्तलिफ है. मुख्तलिफ इसलिए इसको तैयार किया गया है क्योंकि आप लोगों की खूबसूरती का ख्याल रखते साथ जो है ना, इसको डिजाइन किया गया था जिसके अंदर आप लोगों को विटामिंस का फार्मूला तो मिल रहा है, लेकिन साथ साथ आपको सनस्क्रीन भी एड की गई है इसके अंदर, ताकि आप लोगों को ये जो सूरज के असरात जो होते हैं ना, खतरनाक असरात, उनसे भी बचाया जाए, आपकी स्किन की हिफाजत की जाए. तो आपको खूबसूरती मिलेगी, साथ साथ आपकी खूबसूरती की हिफाजत भी होती रहेगी. अगर आप कोई भी काम काज करते हैं, कामों काजों वाले इंसान हैं, तो आप वाइट एज लवली क्रीम का यूज तो लाजमी कीजिएगा. कोई भी जॉब करते हैं, किसी भी काम से जाते हैं, कोई भी सुबह उठकर आपको बस रेडी होना होता है, स्कूल जाते हैं या फिर पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, कोई भी सीन चल रहा है आपकी लाइफ के अंदर, तो वाइट एज लवली क्रीम जो है ना, ये बहुत एक अच्छा काम करेगी आपकी जिंदगी के अंदर. तो वाइट एज लवली क्रीम का यूज आप लाजमी करके देखिएगा. इसे बच्चे, बूढ़े, जवान, हर कोई लगा सकता है, कोई भी एज लिमिट नहीं है. और इसके साथ साथ आप लगाइए जी, मजे कीजिए, और उसके अलावा खूबसूरतियों को लूटते रहिए. और यहाँ पर वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स में मजीद प्रोडक्ट जो हैं, जैसे कि वाइट एज ब्यूटी क्रीम आती है, तो वाइट एज ब्यूटी क्रीम जो कि नाइट क्रीम है, जिसे उन लोगों के लिए तैयार किया गया है जो कि नाइट क्रीम ही लगाना पसंद करते हैं. वैसे बहुत से लोगों की स्किन को नाइट क्रीमों की जरूरत भी होती है. अगर आप ये सोच रहे हैं कि मार्केट में जिस तरह की नाइट क्रीमें आना स्टार्ट हो चुकी हैं, या फिर जैसी आपने पहले लगाकर देखी हुई है, जो कि आप लोगों की खूबसूरती का जो है ना, वो बेड़ा गर्क कर चुकी हैं, तो आप वाइट एज ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कीजिए, जो कि भाई नेचुरल अज़ा से तैयार की गई है. इसके अंदर आपको एवोकाडो मिल रहा है, मिल्क मिल रहा है, और एलोवेरा मिल रहा है. ये सब चीजें आपकी स्किन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा अच्छी है. तो आप वाइट एज ब्यूटी क्रीम जो कि नाइट क्रीम है, इसे आप रात के टाइम अप्लाई कर सकते हैं. और वाइट एज ब्यूटी क्रीम आपकी स्किन को जो है ना, वो सॉफ्टली बना देती है, नर्म मुलायम बना देती है, आपके चेहरे के अंदर तक जाकर आपके चेहरे की खूबसूरती को उजागर करती है, और आपको मिलता है परफेक्ट वाला हुसन. लेकिन बात यह है कि सैया, जरा आपने वाइट एज ब्यूटी क्रीम के साथ वाइट एज ब्यूटी सोप या फिर फेस वॉश का भी इस्तेमाल करना है, क्योंकि अगर कुछ लोगों की आदत होती ना कि वो सोप लगाते हैं या फेस वॉश लगाते हैं, तो आप लोगों को वाइट एज वालों ने दोनों ऑप्शंस दे दिए हैं. यानी कि यहाँ पर आपको वाइट एज ब्यूटी सोप भी मिल रहा है एंड वाइट एज फेस वॉश भी मिल रहा है. तो वाइट एज का जो सोप है ना, वो वाइट एज ब्यूटी क्रीम का डिटो कॉपी है, सेम टू सेम दोनों दिखते हैं, भाव भी लगना है. पर जॾहिं तव्हां वाइट एज जो फेस वॉश वठण वेंदा, ऐं तव्हां इहो सोचींदा त बाबा हाणे वाइट एज जो साबुण सफ़ा वाइट एज जहिड़ो आहे, त फेस वॉश वाइट एज जहिड़ो छो न आहे, त फेस वॉश जेको आहे न, थोरो अलॻि हुनखे तयार कयो वियो आहे. हुन जे अंदरि वाइटमिन सी आहे, हुन जो जेको कलर आहे उहो तव्हांखे ऑरेंज मिलंदो, सम्झो था. वाइट एज ब्यूटी क्रीम जेका आहे उहो थोरो ग्रीन पैकिंग में आहे, ऐं वाइट एज जो जेको फेस वॉश हूंदो उहो ऑरेंज कलर में आहे, छो त हिनजे अंदरि वाइटमिन सी आहे. वाइटमिन सी जो कलर ऑरेंज हूंदो आहे, एतिरी त तव्हांखे ख़बर हूंदी, सही आहे. तो वाइट एज जो फेस वॉश तव्हां लॻाए सघो था, क्रीमी फेस वॉश आहे, ॾाढो ज़बरदस्त फेस वॉश आहे. तव्हांजी स्किन में जेका वाइटमिन सी जी कमी आहे उहा पूरी थी वेंदी, तव्हांजी स्किन सफ़ा ग्लोइंग थी वेंदी. ऐं तव्हां लॻाईंदा कीअं बाबा फेस वॉश, त ॾींहं में 2-3 दफ़ा तव्हां लॻाए सघो था, साबुण बि तव्हां ॾींहं में 2-3 दफ़ा लॻाए सघो था, ऐं वाइट एज ब्यूटी क्रीम तव्हां राति जो लॻायो, बसि राति जो लॻाए सुम्ही पओ. ऐं वाइट एज लवली क्रीम अगरि तव्हां लॻाइण चाहियो था, त वाइट एज लवली क्रीम खे तव्हां 2 दफ़ा या जंहिं महिल बि जेॾी महिल बि तव्हांजी दिलि चवे तव्हां लॻायो, छो त अक्सर ईअं थींदो आहे न, असां रेडी थींदा आहियूं काॾे वञण जे लाइ, त तव्हां ॾींहं में 2-3 बि फंक्शन अची वेंदा आहिनि, या तव्हां सुबुह जो स्कूल वञो था, जॉब ते वञो था, वरी तव्हांजो शाम जो कोई फंक्शन आहे, तव्हां चओ बाबा असां सुबुह लॻाईसीं, हाणे लॻाए सघूं था, बिल्कुलु तव्हां लॻाए सघो था. हीअ फेयरनेस क्रीम आहे त तव्हां मेकअप जे तौर जीअं लॻाए सघो था, जीअं कुझु माण्हू चवंदा आहिनि त बाबा मेकअप खां बचण जे लाइ असां को सुठो प्रोडक्ट लॻायूं, का फेयरनेस क्रीम हुजे जेका लाइट बि हुजे, असांजी स्किन खे खूबसूरत बि बणाए, त तव्हांजे लाइ वाइट एज लवली क्रीम आहे. बाक़ी अगरि तव्हां एक्नी खां परेशान आहियो, दाणा तव्हांजो पीछो नथा छॾनि, त पोइ तव्हां डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब जो इस्तेमाल करे सघो था. ऐं डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब जी सभ खां बहितरीन ॻाल्हि इहा आहे त ही मेडिकेटेड ट्यूब आहे, ऐं हीअ जड़ी बूटियुनि सां तयारु थियल आहे, ऐं उन खां अलावा आयुर्वेदिक फार्मूलो आहे, ऐं हीअ तव्हांजे सिर्फ़ु दाणनि जो ख़ात्मो न, बल्कि तव्हांजे चेहरे ते जेके दाणनि जा निशान हूंदा आहिनि, या फिर रिंकल्स आहिनि, या फिर कोई चोट जो निशान आहे, कोई सड़न जो निशान आहे, अहिड़ी तरह जा जेके प्रॉब्लम्स आहिनि तव्हांजे फेस ते, तव्हां चाहियो था त बाबा हीअ ख़तमु थियणु घुरिजनि, त तव्हां डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब जो इस्तेमालु करे सघो था. ॾाढो परफेक्ट ट्यूब अथव, मां पाण पर्सनली यूज़ करे ॾिठो आहे, ऐं कोई बि हिकिड़ो बि एक्नी निकिरींदो आहे न, बसि तव्हां हुन ते झटि सां डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब लॻाए छॾियो,
एडो थदो थदो वीआईपी वीआईपी तांके एहसास दिंदो पर लगाइण खां पहिरीं हिकड़ी ॻाल्हि तव्हांखे पंहिंजो फेस वॉश करणो आहे पंहिंजा हथ चङी तरीक़े सां क्लीन कयो हथनि खे क्लीन करे पोइ तव्हां डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब पंहिंजे फेस ते अप्लाई कयो सॼे चेहरे ते नाहे लॻाइणो जिते जिते एक्नी आहे निशान आहे ऐं कोई बि कट जो निशान आहे को सड़न जो निशान आहे उन उन एरिया ते लॻायो ऐं पोइ तव्हां छॾे ॾियो तव्हां ॾींहं में ॿ टे दफ़ा लॻाए सघो था यानी कि तव्हांखे घणा सफ़ा घणा एक्नी आहिनि त पोइ तव्हां सुबुह मंझंदि ऐं शाम जो लॻायो न त तव्हां सुबुह जो ऐं राति जो लॻायो सही आहे हीउ ॾाढो वीआईपी ट्यूब अथव तव्हां हिनखे ट्राए करे ॾिसजो ऐं ईअं आहे त मतिलब तव्हां लॻाईंदा त तव्हांजी स्किन जे अंदरि मतिलब जेको आहे न जज़्ब थी वेंदो ऐं तव्हां अहिड़े तरीक़े सां लॻायो त तव्हांजे एक्नी जे मथां नज़र अचे डॉट डॉट करे लॻायो त तव्हांजी स्किन ते सफ़ा वी आई पी तव्हांखे रिज़ल्ट ॾींदो तव्हांजा सभु प्रॉब्लम्स दूर थी वञनि था जॾहिं तव्हां वाइटेश ब्यूटी प्रोडक्ट जो इस्तेमालु कयो था सो वाइटेश ब्यूटी प्रोडक्ट जो इस्तेमालु लाज़मी कयो जीअं तव्हांजी ख़ूबसूरती तव्हांखे मिली वञे ऐं तव्हां पंहिंजे क़रीबी जनरल स्टोर ते अवेलेबल कराइणु चाहियो था त पोइ तव्हांजे लाइ नंबर आहे जनाब साईं मुंहिंजा नंबर लाज़मी डायल कयो नंबर डायल कंदा त तव्हांजे क़रीबी जनरल स्टोर ते ही तव्हां प्रोडक्ट्स अवेलेबल थी वेंदा सो नंबर आहे 03-12-50-25-907 03-12-50-25-907 ऐं ॿियो नंबर आहे 03-27-38-4309 03-27-38-4309 ही नंबर्स तव्हां डायल कयो पंहिंजे क़रीबी जनरल स्टोर ते अवेलेबल करायो तव्हां कॉल या मैसेज छॾे ॾियो हिकिड़ो त हू तव्हांजे एरिया में अवेलेबल कराए छॾींदा उन्हनि खे तंग न कंदा कयो बाबा मिस कॉल ॾी ॾेई भॼी न वेंदा कयो कंजूसी न कयो एतिरी उन्हनि खे हिकिड़ो मैसेज छॾे ॾियो हू पाण सम्झी वेंदा त किथे किथे जेको आहे न वाइटेश जा प्रोडक्ट अवेलेबल न आहे असांखे अवेलेबल कराइणु घुरिजनि ठीकु आहे त उन्हनि जी थोरी हेल्प कयो जीअं हुननि वीचारनि खे बि आसानी थी वञे ऐं उन्हनि खे ख़बर पए त किथे किथे अञा ताईं असांजा प्रोडक्ट अवेलेबल कोन थिया आहिनि सो बिल्कुलु तव्हां असांजो प्रोग्राम ॿुधो पिया वाइटेश जी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड आहे वाइटेश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड जी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स लॻायो था कोन ॿुधायो त सही ख़बर त पवे

अली मुर्तजा कई थी मां भी सोचा पे पांजो रेडियो स्टेशन को ला डाढो नचो थवला डाढो खर्चो थ तां बस बुधू असायो ने रेडियो हलाण जुलाई

बहुत प्यारा गाना एंजॉय करिए और साथ साथ यहाँ पर आप लोगों के साथ बातें भी करेंगे। मैं जरा खो चुकी थी आप लोगों के फीडबैक्स की जाने। अच्छा साजिद हुसैन सुमरो हमारे साथ, वालेकुम अस्सलाम। सिद्रा मुस्कान जी आप कैसी हैं? साजिद अली क्या कहते हैं? कलाम सुनाइएगा। बिल्कुल कलाम सुनाते हैं। आप हमें सुन रहे DIG ऑफिस लाड़काना से, खुश आमदीद। वैसे आप वहाँ क्या जॉब वगैरह करते हैं? और उनके अलावा अली मुर्तजा कहते हैं टॉपिक पर बंदर, क्योंकि जानवरों में सबसे अजरंगी जानवर बंदर ही है, लाइक उसकी हरकतें मरी में देख आया हूँ मैं। चले अच्छी बात है। और अखलाक भाई कहते हैं अंसर भूरी में बटारी हल्लड़े, क्या बात है। और हमारे साथ हैं जी हजार भाई कहते हैं टॉपिक अदीब, कैट बिल्ली सच्ची बताएं। मुश्ताक अहमद कुंभर कहते हैं प्लीज इधर सॉन्ग लगाइएगा रंग तेरा ऐसा, चले मैं देखती हूँ ये गाना मिला तो लगा लेते हैं। बख्तली सियाल भाई कैसे हैं, ठीक ठाक है? ओके जी, पोस्ट को जरा लाइक और शेयर करते रहिए क्योंकि मुझे पता चले कि कितने सारे लोग हैं जो पोस्ट को लाइक और शेयर करते जा रहे हैं। एसन अरबाणी में सुन रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम। मौलवी इस्लाम अदद कहते हैं माय फेवरेट आरजे मैडम मुस्कान लाड़काना की पहचान, आप कैसी हैं और आपकी तबीयत कैसी है? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे, मैं भी आपके साथ साथ हूँ। बहुत शुक्रिया एसन, आप हमारे साथ साथ हैं। और बताएं YTH का कौन सा प्रोडक्ट लगाने का इरादा है या फिर इस्तेमाल कर रहे हैं पहले से ही? रिहाना खाना में सुन रही है बखर से, हेलो। ओके जी, ये हमारे साथ हैं गुलाम फरीद बलोच, सलाम आरजे सिद्रा जी आप कैसी हैं और बाकी सब ठीक ठाक हैं? आपका प्रोग्राम ब्यूटीफुल है, सॉन्ग लगाएगा फायजा अली का। बिल्कुल जी, आपको फायजा अली सुनाते हैं। किशोर भाई कहते हैं अगर खुदा मुझे कहे आप जिंदगी भर के लिए किसी ऐसे शख्स का इंतखाब करो जिसके फेस पर मुस्कुराहट जचती हो तो मैं आपका नाम लूंगा। ब्लशिंग। देखो मैं कितनी मासूम हूँ, मैं तो इतने में ही पिघल जाती हूँ। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा चलें दूसरा गाना भी सुन लेते हैं और इसके साथ से जिन लोगों ने पोस्ट को लाइक और शेयर नहीं किया जल्दी से कीजिए। और जो नंबर आपको बता रही हूँ ना वो नंबर आप डायल किया करें ताकि आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर भी YTH ब्यूटी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो सके। और YTH ब्यूटी प्रोडक्ट्स अवेलेबल कराएंगे तो आपके लिए ये चीज होगी कि आपके लिए आसानी हो जाएगी, बस आप जाएंगे और परचेज करके आएंगे। अच्छा हैप्पी गर्ल कहती है स्वीटी आपके सवाल का जवाब है कैटी। चाचा खालिद कहती है अस्सलाम वालेकुम बेटा सिडो, आप कैसी हैं फीलिंग टुडे? मेरी फीलिंग बहुत अच्छी है, आप बताइए आप कैसे हैं, आपकी फीलिंग कैसी है? वासु भाई हेलो कैसे हैं? अली अकबर ब्रोही भाई हमें सुन रहे हैं सकरण से, आपको प्रोग्राम पसंद आ रहा है, थैंक यू। अनवर भाई कहते टॉपिक खटियो खाए फकीर लठियो झले, नन्ना लठू बेचारो भोलड़ो झलींदो आए। ओके जी, वासु भाई के दादी गोठ नितल जलबाणी खां शहजादो जलबाणी तव्हां जो प्रोग्राम बुधी पयो भाजू मोहब्बत आइन बाबा YTH ब्यूटी क्रीम जो दस्त देस। अखलाक भाई कहते हैं नाइस YTH ब्यूटी क्रीम, आप कब लगा रहे हैं बताएं तो। हजार खान कहते हैं कि यादें भी कितनी अजीब होती हैं ना, बंद आंखों से भी नजर आती हैं कुछ लोग, वाह वाह वाह वाह। दर्दे दिल आ चुकी है, वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ आप बताएं स्वीटी। और ये हमारे साथ हजार भाई कहते हैं समझी वयासी YTH जी लवली क्रीम सबक हाँ बेहतरीन आए। बिल्कुल YTH जी लवली क्रीम त मतलब मां चवंदी आहियां त दुनिया जो जेको हिकु हिकु माण्हू आहे न हिकु हिकु माण्हू यानी कि जेके दुनिया में सॼा माण्हू वो एक मानू YTH जी लवली क्रीम लगाए सभी जे मतलब हिसाब वाली क्रीम है सभी के फायदो पहुंचाई जी चीज तवे फायदो पहुंचाए तुम लाजमी वा कर।

रमजान अली भाई आ चुके हैं, वालेकुम अस्सलाम कहते हैं बहना, आपका शो आपके शो में आ गया, वेरी नाइस शो, थैंक यू भैयू जी। दर्द दिल कहती माय फेवरेट आज चंदा जानी, खिलना गुलाब का नहीं हरगिज़ कोई दलील, तुम मुस्कुरा रही हो तो समझो बहार है, कसम तो सच्ची बताया जाए। अच्छा किशोर भाई कहते अदा, अगर अवहां जो गानों हलायण फर्ज आए तो लिसनर जो भी फर्ज आए तो हफ्ते में एक या बद दफा रिक्वेस्ट करे, बाकी रोज रोज फरमाइश करन न कपे, अगर करन था तो इंतजार भी कर, जे मौको मिले उन डी हलाईंदे, एतरी जेको आहे न थोरो ख़्याल हर कोई न रखंदो आहे वीचारी आरजे जो, सो बस मिड़े ई चवंदा असां बि हलंदी के हलाए ईअं हुजे त बाकी ॿियो छा खपे। चलें जी गानो हिकिड़ो ॿियो लिस्ट में मौजूदु आहे त असां ही वारो गानो ॿुधी वठूं था। काफ़ी टाइम खां सोचां पई असां ही गानो छो न ॿुधो आहे, सो उहो काफ़ी टाइम खेर असां अॼु अची वियो आहे, सो बिल्कुलु तव्हां ॿुधो पिया प्रोग्राम वाइटिश एंड डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाए वाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स, लॻाईंदा रहो जीअं ख़ूबसूरत थींदा रहो। हज़ार भाण हिन गाने ते डांस करे ॾेखारियो।

थोड़ा टाइम पहले बड़ा ट्रेंडिंग में चला था, छाछे बुआ है शायद, यू ही चेबुआ जड़ी बूटी हालांकि छाछे बुआ इतनी सीधी तनिया तई वो कौन से किया है। और कहते हैं अच्छा डॉट डॉट करे तव्हां खे वाइट एज ब्यूटी क्रीम न तव्हां खे वाइट एज जी जेका डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब आहे न उहा लॻाइणी आहे, छो त जिते जिते तव्हां खे एक्नी हूंदा आहिनि उते उते लॻायो त डॉट डॉट थी वियो न कॾहिं कॾहिं मूंखे एक्सप्लेन करण बि न आहे।

चर्चा करें गाने के बाद हम जाएंगे जनाब न्यूज ब्रेक की जाने, उसके बाद शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक होने वाले हैं, वापसी जल्दी आप लोगों के पास, सुनते रहिए एंजॉय कीजिए और हमारा साथ दीजिए। और आप सुन रहे हैं व्हाइट एश एंड स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। कौन सा प्रोडक्ट लगा रहे हैं बताएं ना, इतना देर छुटा गयो भला।

0: It's 2 p.m. This time check is brought to you by
1: Fakiri Analgesic Cream. Dard, sojan, varam fauri khatam. Aaj hi kareebi store se naam lekar talab karein.
2: Ab aap sunenge GAFM Network par KTN News.
3: भारत खिते में दहशतगर्दी जो सब का वो सरपरस्त है अदम इस्तकाम जो जिम्मेवार है दिफा वारे वजीर ख्वाजा आसिफ भारत वजीर राजनाथ सिंह के बयान के रद्द कंदे है तो भारत के जारण कदम सबब खितो यर्गमाल है भारत वजीर के बयान बाजी बिगड़ती जोगी है जेका खतरन के वधिक वधाए रही है।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: यार ही गोल्डन जो सो रहे
2: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरा पर होंडा मोटरसाइकिल जोपुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरा पर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल की कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएमजी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाए 0320180003।
3: खुशखबरी अपनी जिल्द को दे नई ताजगी चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर नोट खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नजद रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300338569।
4: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
5: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तियाब आई।
4: हाँ यचो मेहरान आयरन स्टोर नज़द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी।
5: राब्ते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300320437200242460100।

0: कॉलम में मौजूद आहिन फौजी भाइरन लाए खुसूसी रियायत होंदी राबते लाए फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
1: अस्सलाम वालेकुम अदा।
2: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
1: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
1: न अदा?
0: यार आजकल शहरन तोड़े गोछन में जी मेरा पर एफएम 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
1: मुझे दुकान जी बेड हरंदी?
2: हां अदा, कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
1: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
0: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नर्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
2: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
3: 0301-399-2836
0: आई मोहम्मद उमेर गोरी 0319-1565-724।
4: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो जी एफएम 94।

0: It's 2:15 PM.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan. खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 0300-338-5569।
3: अपना शहर अपना घर मेहरापुर, और मेहरापुर की आवाज GAFM 94।

ओके जी, यहाँ पर हमारे साथ कश्मीर से खलाक बलोच कहते हाय सिद्रा प्ले सॉन्ग लगायूं था बाबा तान जो गानों भी तावेरो पानी सीट थे। इरम कहती ओ मेरी प्यारी दिलबर दोस्त जाने सिद्रा प्लीज आज मुझे मुमताज मुलाई का सेहरा लगाइएगा सुनाइएगा। बिल्कुल सुनाते हैं आपको सेहरा। रियाज महर है जी हमारे साथ, वालेकुम अस्सलाम कहते हैं आपको। मीरपुर खास अब्दुल्ला महर कहते हैं अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम प्यारे भाई। अच्छा बशीर लिगारी हमारे साथ है, गोठ मीर खान लिगारी। वालेकुम अस्सलाम सिस्टर, कीअं आहियो? अव्हां जो प्रोग्राम लाजवाब आहे, रोज़ ॿुधंदा आहियूं सोमबतूं प्यारे भाउनि जो। थैंक यू सो मच चाचा खाले, तव्हां गाने जी फरमाइश कई आहे हलाइण जी फुल कोशिश कयूं था। यासीन गुडाड़ो हमारे साथ है, अलाह जो शुक्र आहे। अव्हां ॿुधायो कीअं आहियो? शाहिद बबर जो कलाम ॿुधरायो डेडिकेट बशीर लिगारी जे नाले।

तव्हांजी ही गानो काफ़ी टाइम खां ॿुधूं पिया, पर सोचां पई त कॾहिं हलाईंदासीं फ़ाइज़ा जे गाने जी फरमाइश अची वई, त मूं सोचो त ही गानो ॿुधी वठूं था। सो यासीन भाउ, तव्हांजी मोहबतूं आहिनि, तव्हां ॿिन्हिनि भाउनि खे वेलकम चऊं था। मायरा सॼो प्रोग्राम ॿुधे पई, मायरा छा ला ख़ुशि आहियो, छो न कंहिं आपी जान में बि आपकी अच्छा, आप हमारे साथ है, यदि आप ही एक बात पूछूं, कुछ लोग ब्लैक कलर की ड्रेस में इतने प्यारे क्यों लगते हैं? क्योंकि वो डे स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कर चुके हैं, और जो लोग डे स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करेंगे तो उनके ऊपर तो ब्लैक कलर जचेगा ना। तो ये असल रीजन ये है कि उनके ऊपर ब्लैक कलर क्यों जचता है, क्योंकि वो बहुत खूबसूरत हो चुके हैं। तो डे स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कीजिए ताकि आपके ऊपर भी ब्लैक कलर अच्छा लगे। अच्छा फजीला सिंधी हमारे साथ, वालेकुम अस्सलाम, हैप्पी मंडे आफ्टरनून माय स्वीट बेस्ट आरजे सिस्टर सिद्रा मुस्कान, कैसी हो डियर जी? और कहती हैं सलाम माय स्वीट हार्ट मॉम एंड कायनात और सब स्वीट सिस्टर्स के नाम। टॉपिक के ऊपर कहती हैं केट, ओके।

बिल्कुल सी डे स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कयो सोणा सोणा थी वणो बाबा खूबसूरती हासिल करण सबनी जो हक आहे रमजान भाई छा चो अच्छा गानो बिल्कुल तांचो गानो हलाने की कोशिश कयूं था प्यारा भा और उदास लड़की हमारे साथ ही वालेकुम अस्सलाम उदास लकड़ी चाहिए थी वेलकम टू शो और टॉपिक देती है केट ओके जी और उनका अलावा

मत बैठा धोबी। हैप्पी गर्ल, बहुत शुक्रिया, आप हमेशा खुश रहें। वैसे तो आपका नाम ही हैप्पी गर्ल है, वैसे भी खुश रहें, मुस्कुराती रहें। अब्दुल वफा अब्दुल वही जतोई हमारे साथ हैं, भाई को वेलकम कहा जाता है। और हमारे साथ हैं जी यहाँ पर दर्दे दिल दर्दे

अच्छा, हजार भाई कहते हैं कि महबूब पोस्ट तक नहीं आता और बाबा जी ने कदमों तक का लारा लगाया हुआ है, यही तो रोला है जी। बात को समझा करें, चक्रों में नहीं पड़ा करें।

खान भाई हमें सुन रहे हैं बलूचिस्तान से, नवीद भाई आपको वेलकम कहा जाता है, वफा शहजादो मक्सी भाई हमें सुन रहे हैं लाड़काना से, भाईजान को प्रोग्राम पसंद आ रहा है, थैंक यू। वासव भाई ने तो जवाब वखरा ही दे दिया। हैप्पी कहती है कि आरजी डॉक्टर, हाँ जी डॉक्टर ने डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगा ली है तभी वो इतनी खूबसूरत हो चुकी है, आप भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगा के देखिएगा। अनवर भाई कहते हैं डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगायो, जवान ना बल्कि नौजवान थी वेन्यू। जवान नौजवान में केड़ो फर्क आ है, एक्सप्लेन अस प्लीज।

0: अच्छा अकलाक भा तांखे गोलणो न पंदो बस तां पांजे करीबी जनरल स्टोर ते वणो उता मालूमात वठो दी स्किन ब्यूटी क्रीम परचेस करियो छो अई तवा पो इस्तेमाल कयो तां पाणे सोणा थी वेंदा
1: जन वाट फनया थई जीवो जी हणे तो मा
0: अच्छा निदड़ी कहती है टॉपिक मेरे कजिन्स क्योंकि वो सब जानवरों से कम नहीं
1: जन वाट फनया
0: ये तो अस मोमेंट हो गया दर्दे दिल कहती टॉपिक कैट और मेल में गदा ओके जी ओके अनवर भाई कहते हैं ऐसा सिर्फ बिन रातन में अमीर थियण चाहूं था भली पेश के शाये फायदो वठो किस्मत वरी वरी साथ न दींदी आए बिल्कुल बिल्कुल अनवर भाई सो केडो सियाणो आए बिन रातन में बिल्कुल ता अमीर थी वेंदा अमीर न बल्कि अमीरन वारी तव्हांखे फीलिंग अची वेंदी फीलिंग अची वई त बस माना ॻाल्हि ख़तम थी वई नी सो बिल्कुल तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम लॻाए सघो था डी स्किन ब्यूटी क्रीम सां गॾु तव्हांखे डी स्किन फेस वॉश बि मिले थो इन खे न विसारियो बाबा न विसारियो भला थियो गाना ॿुधो गाने सां गॾु असां वञूं था शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक जी तरफ़ खां पोइ जल्दी वापसी तव्हां मोटी ना थी तव्हां वेठा हुजो मां ओहीअ वञी ओहीअ मोटा थी सो स्टे ट्यून्ड स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग वाइटेश एंड डी स्किन ब्यूटी शो इज़ स्पॉन्सर्ड बाय वाइटेश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स

0: ये FM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज। एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, खरी रोड मेहरापुर, 03003385569।
2: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन, मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, शानदार तालीमी इमारत, प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन, एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकाद, मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला, सरसब्ज बागीचा, बेहतरीन फर्नीचर, शानदार कंप्यूटर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स, ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जो, एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिले तहसीन नतायज, खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले, तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले, स्टडी टूर्स, अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन, मैनेजिंग डायरेक्टर मजर स्कूल सिस्टम, 03000027234। निसार अहमद मेमन, प्रिंसिपल मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, 03013865453।
3: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चौपर एतमाद, अइमा अख्तियार 3S डीलर, आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल, कंपनी जे मुकरर कल रेट दे दस्तियाब है, सर्विस सेंटर, एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी है, होंडा कंपनी जा तफ खुसूसी रियायत ते मौजूद, आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो, कंप्यूटराइज्ड जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर, फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट, कंप्यूटराइज्ड जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी, होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जेर निगरानी, आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर, राप्ति जिला आसिम हुसैन आराई, 03073592120।
4: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो, डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
5: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम,

0: मेरा फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फॉली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमबी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर।

0: मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियो बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वजन जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 03011 96 851
1: अस्सलाम वालेकुम अदा
2: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
1: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
1: न अदा
3: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर एफएम 94 ही हले थो मु पंजो दुकान खोलियो त एफएम मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली नथी चवे
1: मुजे दुकान जी बेड हलंदी
2: हां दा कारोबारी इश्तिहारत आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी
1: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
3: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर राबते लाए मंसूर अहमद मेमन 03013803743
4: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी एफएम 94

0: बि जो की गाना खोड़ सारा लिस्ट में मौजूद आन सो धीरे धीरे सब अस गाना बुधा वीदी गानों हलो आको मंजूर सिखरानी की आवाज में होंद शायद आई थिंक सो सो बिल्कुल बुधासी उन अलावा पैनल से कुछ तवज मैसेजेस आन ये मौजूद है हमारे साथ असलम प्यारी मिठड़ी कड़ा हाल है तवज फुल जी स्टेशन का फोर जी
1: वफा सफदर स्याल चवे
0: अच्छा फौजी भाई कहते हैं थोड़ो ता जो नालो मुके समझ में नथु अचे थोड़ो हेडा उरा थिया ता पानो मैसेज चेक करे वट जो अलै छा लिखियो तव अदि असा के फौजिया सुमरो जो गानो बुधायो बिल्कुल भामा कोशिश कियांती ता जी पसंद जो गानो हलाय वठू था और शोनी की थी आपी नहीं नहीं चुप कर और ये मौजूदी अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम मौलाना इस्लाम मदद बेरिया रोड खान डॉक्टर हसीना सुमरो अदि भेण असा के गानो बुधायो फायजा अली जो बोला हन तावीज कराए तो के मुख जुदा कयो थन फायजा अली जो गानो हाणे असा बुधी बैठा सी यो गानो ताके सुभाणे बुधराइंदा सी ठीक है और हाफिज नई मुल्ला भाई कहते हैं अस्सलाम वालेकुम बाजी आप कैसी हैं आप अल्लाह करे हमेशा मुस्कुराती रहे आमीन थैंक यू सो मच यदि आपने पूछा था कि क्रीम मिल रही है नहीं तो मुझे पता नहीं है चले फिर आप ऐसा कीजिएगा आप अगर जाए मार्केट तो आप मालूम लीजिएगा ठीक है अवेलेबल है तो अच्छी बात नहीं तो फिर जो नंबर आपको बताए जा रहे ना उनके ऊपर राता करके उन्हें बताइए कि फलां जगह पर आपके प्रोडक्ट्स नहीं मिल रहे हैं ओके जी हाफिज नईमुल्ला भाई आपको वेलकम कहा जाता है और इरम कहती हैं थैंक यू शोनी कहती हैं आपी वाह वाह क्या बात है जी ले है आपकी तो

ओके जी, बहुत प्यारा गाना सुन रहे हो, साथ साथ प्रोग्राम सुन रहे हैं. व्हाइटिश एंटी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से. पोस्ट को लाइक और शेयर करें जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया. और साथ ही साथ हैं जी हमारे साथ जवान मोहम्मद बच्चन शंबानी भाई, वालेकुम अस्सलाम. प्रोग्राम आपको पसंद आ रहा है उसके लिए थैंक यू सो मच. साजिद हुसैन सुमरू हमारे साथ हैं. मिठू देरों से आप हमारा शो सुन रहे हैं, वेलकम कहा जाए.

0: अच्छा किशोर भाई कहते हैं कि जिसने ब्लैक कलर का पूछा उसको आपसे उम्मीद थी कुछ अलग कहेंगी लेकिन आपने वही कहा डी स्किन ब्यूटी क्रीम का कमाल है बाबा। हमसे भाई कुछ अलग की उम्मीद मत रखें, हम आपको डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में ही बताएंगे क्योंकि जो हकीकत है वो कहनी चाहिए, बोलनी चाहिए। ओके जी, सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं लगाई तो जल्दी लगाइए, ठीक है, वरना देर हो जाएगी। आप खूबसूरत नहीं होंगे, सारे लोग खूबसूरत हो जाएंगे। ओके, निदड़ी छाती छवि
1: जान तो
0: क्या बोला मैंने
1: जी दिखारी दूं जान तो मापा जी छदाई दूं।
0: अच्छा अनवर भाई कहते हैं प्रोग्राम बुधण वक्त मीह भी वसे गड चाय भी हुजे समोसा भी हुजन पकोड़ा भी हुजन आए हाय छा त फीलिंग हुंदी। यो सब थी सके तो पर सिर्फ हिकड़ी बारिश जी कमी आए, सो बारिश अगर थी वने थी त पो सब कुछ आसान आहे। सो अलाह कंदो मी वसंदो बाबा तारे टेंशन न कयो दिल नंडी न कयो। ही आहे गानो जेको असांखे एसन शायद फरमाइश कयो हुयो।

अच्छा हिते छा था चओ त नौजवान जो मतलब नौजवान मूंखे हाणे ॻाल्हि सम्झ में आई अच्छा रमज़ान भाई तव्हांजो गानो हलाइण जी कोशिश कयूं था बाबा न हलियो त 5 बजे वारी प्रोग्राम में हलाए वठूं था ठीकु आहे टेंशन न वठो

आओ बाबा हर को पाण ॼाणे उहो दौरु हले थो वाकई बि ऐं तव्हां बि डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमालु कयो बाबा कोई कंहिंजो कोन अथव ख़ूबसूरत रहो ऐं ख़ूबसूरती हासिलु कयो डी स्किन ब्यूटी क्रीम लॻायो डी स्किन जो फेस वॉश बि वठो विलेज मोहम्मद इब्राहिम संदीलो से मोहम्मद हारून संदीलो भाई हमारे साथ मौजूद है भाईजान आपको वेलकम एंड खुशामदीद कहा जाता है

अच्छा हजार भाई भी हमारा शो सुन रहे हैं। हजार भाई आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा ये हमारे साथ मीर तारिक बलोच, वालेकुम अस्सलाम कहते हैं भाई को, लाड़काना से आप हमारा शो सुन रहे हैं, पूरी संगत प्रोग्राम बुधे पई सुतवा जी सबनी जो मोहब्बत हुआ सबनी के चौथा वेलकम।

जानो। अखलाक भाई कहते हैं माँ समझो लाइट हली वही मुखे लगो माँ का हरकत है कई शायद पर न बाबा गाने जो हो फॉल्ट एकदम सत्ते में आ गई। ओके और ऐसन कहते हैं कहें के चाय पीनी या जें के पीनी या वो पांजी वेठी पिए हाओ बाबा हाओ समझी वासे आई पांजी पांजी डी स्किन ब्यूटी क्रीम भी वठी चे ई भी तो चौनी खबर पवे मानन के आई डी स्किन ब्यूटी क्रीम नथी मिली तो बाबा जी के नंबर बुधानन के रातो जरूर करी वजो समझो दा हाँ चाचा इनकी छोस पर तुम डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाए सको था हाँ तो ता लगायो डी स्किन ब्यूटी क्रीम बिल्कुल ही दर्दी दिल अभी हमारे साथ मौजूद है बाबा बारिश में तो पकोड़ा ही सुछा लगना है मकोड़ा ने तो पकोड़न की लोग कयोस।

हां जी, गानो त ॾाढो भलो तव्हां ॿुधो पिया, पर तव्हां असां सां गॾु मौजूदु आहियो, तव्हांजो मोहबतूं आहिनि बाबा, इहे कुर्ब आहिनि, अलाह करे कुर्ब हमेशह क़ाइमु ऐं दाइमु रहनि। ऐं तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम हणंदा रहो ऐं डी स्किन जो फेस वॉश बि हणंदा रहो, उन खां अलावा वाइटी जा प्रोडक्ट बि हणंदा रहो, तव्हांजे एरिया में न आहिनि अवेलेबल त तव्हां अवेलेबल कराए वठो बाबा, अवेलेबल कराए वठो। अच्छा, कराची में वाकई थोरी बि बारिश थी वेंदी आहे त सॼो सिस्टम नहस नहस थी वेंदो आहे। वैसे वहां का थोड़ा सिस्टम अजीब है, मैं तो कहती हूँ भाई शाबाश उन मानन खा जेके उते रहन था, मतलब घुमण जे हिसाब से सही आ, वनो घुमी फिरी मोटी जो बस पाने पाने गोठ या कसम आया रहन वारो कमजोर आहे, उता ही ट्रैफिक तो बा, मुखे लगे तो कराची जी मानन जी अद्ध उम्र त ट्रैफिक में गुजरी वई आ बेचारा। अरे छा था चओ अदा, तुंहिंजी ज़बान में अॼुकल्ह इहो थोरो कॉमेंट सम्झ में न आयो, थोरो सम्झाइजो। इन खां अलावा टाइम बि सफ़ा ख़तम थी वियो आहे प्रोग्राम जो, ऐं तव्हां सां मुलाक़ात वरी थिए पई मुंहिंजी 5 बजे वारे प्रोग्राम में। सो बिल्कुलु जी 5 बजे वारे प्रोग्राम में मिलूं था, ऐं तव्हां जॉइन कंदा 5 बजे वारे प्रोग्राम में, ऐं किथे का ग़लती थी हुजे त माज़रत कयूं पिया। पंहिंजो लाइ सॼो ख़्यालु रखिजो बाबा, मोकिलाणी नाहे सिन सलामत सा सलामत, अलाह हाफ़िज़, बाय बाय, लव यू ऑल एंड टेक केयर।

भारत खिते में दहशतगर्दीअ जो सभ खां वॾो सरपरस्त आहे, अदम इस्तेकाम जो ज़िमेवार आहे। दिफ़ा वारे वज़ीर ख़्वाजा आसिफ़ भारतीय वज़ीर राजनाथ सिंह जे बयान खे रद्द कंदे चयो आहे त भारत जे जारहनि क़दमनि सबबि खितो यरगमाल आहे। भारतीय वज़ीर जे बयान बाज़ी बिगड़ती जोॻी आहे, जेका ख़तरनि खे वधीक वधाए रही आहे। अमेरिका खे ॻाल्हियूं बहाल करण जी दरख़्वास्त नाहे कई, ईअं करण असांजी फितरत में नाहे। ईरानी परॾेही वज़ारत जे तर्जुमान इस्माइल बकाई चयो आहे त साल असां ताईं अमेरिका जा पैगाम पहुचाईंदा आहिनि, फ़िलहाल वॉशिंगटन सां असांजी का बि ॻाल्हि ॿोल न थी रही आहे। आबना हरमुज़ बाबति ओमान सां मुस्बत ॻाल्हियूं थियूं आहिनि, आबना हरमुज़ जी सूरतहाल तब्दील नाहे थी। अमेरिका खे जंग ऐं अमुन जो वक़्तु तय करण जी इजाज़त न ॾिनी वेंदी, यूक्रेन खे ईरानी जहाज़ ते हमले जो जवाब ज़रूरु ॾिनो वेंदो। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप हथियारनि जे ज़खीरे में खोट वारनि ख़बरनि खे रद्द करे छॾियो। अमेरिकी अख़बार वॉल स्ट्रीट जर्नल सां ॻाल्हाईंदे डोनाल्ड ट्रंप चयो आहे त अमेरिका वटि दुनिया जे कंहिं बि मुल्क़ खां वधीक हथियारनि जो ज़खीरो मौजूदु आहे। अमेरिकी दिफ़ाई सलाहियतनि बाबति गर्दिश कंदड़ ख़बरनि में हक़ीक़त नाहे। पेंटागोन ईरान खिलाफ़ जंग में 18 फ़ौजियुनि जे मारजण जी तसदीक करे छॾी, 200 खां वधीक ज़ख़्मी। ईरान खिलाफ़ जंग में मारिजी वियल वधीक 4 फ़ौजियुनि जा नाला लिस्ट मां ग़ाइब। अमेरिकी ख़बरू इदारे मूजिबि गुज़िरियल हफ़्ते पेंटागोन जंग दौरान मारिजी वियल 4 फ़ौजियुनि खे लिस्ट मां हटायो आहे, नाला हटाइण जो को बि कारण नाहे ॿुधायो वियो। ईरान आबना हरमुज़ मां गुज़रण जी कोशिश कंदड़ 6 बहिरी ॿेड़नि खे रोके छॾियो। ईरानी सरकारी मीडिया मूजिबि आबना हरमुज़ जे गैर महफ़ूज़ रस्ते तां सफ़र जी कोशिश कंदड़ 6 बहिरी ॿेड़नि मां हिकु हादसे जो शिकार थियो आहे। बहिरी ॿेड़ा अमेरिकी फ़ौज जे हिदायतनि ते आबना हरमुज़ मां सफ़र करे रहिया हुआ त खेनि रोकियो वियो।

अलाव रूस के हथियार फराम करे जंग में शामिल थी चुको आहे असां के मोहतात रहणो पवंदो कोशिश करणी पवंदी त नओं मुहाज़ न खुले यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की चयो आहे त ईरान ऐं शुमाली कोरिया पहिरें ई असां ते हमला करे चुका आहिनि उमीद आहे त हमला न वधंदा ईरान जे क़ौमी सलामती बाबति सलाहकार इब्राहिम अज़ीज़ी चयो आहे त ईरान पंहिंजे ख़िलाफ़ कार्रवाइनि ते जवाब ज़रूर ॾींदो आहे ऐं यूक्रेन खे बि जल्द ख़बर पइजी वेंदी सिक्योरिटी फोर्सेज जे ऑपरेशन दौरान गिरफ़्तार दहशतगर्द जा हिंदुस्तानी फितने बाबति छिरकाईंदड़ इंकशाफ़ रुगो 25,000 ते बलोच नौजवाननि खे क़तल करण जो बि एतिराफ़ दहशतगर्द हबीबुल्ला चयो आहे त दहशतगर्द तनज़ीम पैसनि जी लालच ॾेई भर्ती कयो दहशतगर्दी जी तरबियत बि ॾिनी वई हमलनि बाद सुञाणप लिकाइण ऐं फ़रार थियण जा गुर बि सेखारिया विया रुगो 25,000 एवज़ पंहिंजनि बलोच भाइरनि जे रत सां पंहिंजा हथ रंगिया दहशतगर्द तनज़ीम छॾींदड़नि खे मारियो वेंदो आहे सिंध जूं सरकारी अस्पतालूं HIV पखेड़जण जो सबबु बणिजी लॻियूं घिम्स वलिका ऐं लांडी जे सोशल सिक्योरिटी अस्पताल बाद कराची जे सभ खां वॾे ॿारनि जी अस्पताल NICH इलाज लाइ आयल ॿारनि जी HIV में मुबतला हुअण जी तसदीक ज़रियनि मूजिब सिंध जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि मां इलाज लाइ NICH आंदल ॿारनि जा टेस्ट कराइण दौरान केतिरनि ई ॿारनि में HIV जी तसदीक थी आहे कराची जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि मां इलाज लाइ NICH आयल ॿारनि में HIV जी तसदीक थी आहे ॿारनि जो अंगु 50 आहे

0: में मौजूद आहिन फौजी भैरन लाए खसूसी रियायत होंदी राबते लाए फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कयल रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज्ड जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनिए थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर राबते जे लाइ 0320-18-00-003।
2: खुश खबरी अपनी जिल्द को दे नई ताजगी चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिक्र छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर नोट खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट करवाएं। पता रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नजद रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569।

0: अस्सलाम वालेकुम अदा।
1: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
0: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
1: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
0: न अदा?
2: यार आज कल शहरन तोड़े गोछन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली नथी चवे।
0: मुझे दुकान जी बेड हरंदी?
1: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
0: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
2: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
1: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
3: 03013992836
2: आई मोहम्मद उमेर गोरी 03151558724।
4: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर, और मेहराबपुर की आवाज जीए FM 94।

0: It's 3:15 PM.
1: This time check is brought to you by White-ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan. खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 0300-338-5569।
2: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी एफ एम 94।

खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेरापुर कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमण एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमपी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा ख़मीस जुमे छंछर आचर

0: पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों ॿारनि में कद जो न वधण मर्दनि ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-9196-8151।
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए नए बालों की निशोनुमा में मदद दे बालों को घना और सेहतमंद बनाए घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 03003 8569।

0: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
1: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है, सुनते रहो GFM 94।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: आजाद कश्मीर के आम चूंडन के पहरे मरले में मीरपुर डिवीजन अमल जारी। पोलिंग जो अमल मुकम्मल थियण में बाकी एक कलाक बचो। सुबह 8 वगे शुरू थे पोलिंग, 5 वगे तई खत्म थी। पोलिंग स्टेशन बारह वोटर्स जो कतारू लगल। मीरपुर डिवीजन के टिन जिलन मीरपुर कोटली मुंबर के 13 तकन से 14,1,449 वोटर रजिस्टर्ड थे। सिक्योरिटी इंतजाम इंतई सख्त क्या वह है। नू लीग ए पीपुल्स पार्टी जहा एक बेटे धांधलिन जा इल्जाम। इलेक्शन कमीशन का जांच जो मुतालबो। भारत खिते में दहशतगर्दी जो सब का वो सरपरस्त काम जो जिम्मेवार है। दिफा वारे वजीर ख्वाजा आसिफ भारतीय वजीर राजनाथ सिंह के बयान के रद्द कंदे है। भारत के जारान कदम सबब खितो यर्गमाल है। भारतीय वजीर के बयानबाजी भी घंटी जोगी है जेका खतरन के वधीक वधाए रही है। बहाल करण की दरख्वास्त न कई ये करण असि फितरत में ना है। ईरानी परदेही वजारत के तर्जुमान इस्माइल वकाई है साल से असा ती अमेरिका जा पैगाम पहुंचाईंदा। फिलहाल वॉशिंगटन से असाजी का भी गाल बोल नथी रही है। आबना हरमुज बाबत ओमान से मुस्बत गाल आबना हरमुज की सूरत हाल तब्दील ना थी। अमेरिका के जंग अमुन जो वक्त तय करण की इजाजत न डी वी। यूक्रेन के ईरानी जहाज के हमले जो जवाब जरूर डनो वो। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप हथियार के जखीरे में खोट वाले खबर के रद्द कंदे अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल से गालाईंदे डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका वट दुनिया के कें भी मुल्क हथियार जो जखीरो मौजूद है। अमेरिकी दिफाई सलाहत बाबत गर्दिश कंदड़ खबरों में हकीकत ना है। पेंटागोन ईरान खिलाफ जंग में अरिड़ा फौजन के मारजन की तस्दीक कर छी। 200 का जख्मी ईरान खिलाफ जंग में मारजी वेल वधीक 4 फौजन जा नाला लिस्ट में गायब। अमेरिकी खबरू इदारे मूजिब गुजरियल हफ्ते पेंटागोन जंग दौरान मारजी वेल 4 फौजन के लिस्ट में हटाया हुआ है। नाला हटाने जो को भी कारण ना है बुधायो वयो। ईरान आबना हरमुज में गुजरण की कोशिश कंदड़ 6 बैरी बेड़न के रोके छो। ईरानी सरकार मीडिया मूजिब आबना हरमुज के गैर महफूज रस्तन ता सफर की कोशिश कंदड़ 6 बैरी बेड़न में एक हादसे जो शिकार थो है। बैरी बेड़ा अमेरिकी फौज के हिदायतन से आबना हरमुज में सफर कर रहा हुआ त खेन रोको वो। ईरान यूक्रेन खिलाफ रूस के हथियार फराहम कर जंग में शामिल थी चुको है। असा मोहतात रहो पव कोशिश करनी पवंदी त नव मुहाज न खुले। यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की है ईरान ए शुमाली कोरिया पेरे ही असां ते हमला कर चुका है। उम्मीद है हमला न वधंदा। ईरान के कौमी सलामती बाबत सलाहकार इब्राहिम अजीजी है ईरान पैंजे खिलाफ कार्रवाई ते जवाब जरूर डींदो है। यूक्रेन के भी जल्द खबर पेजी वी। सिक्योरिटी फोर्सेज के ऑपरेशन दौरान गिरफ्तार दहशतगर्द जा हिंदुस्तानी फितने बाबत छिड़काईंद इंकशाफ। रुगो 25,000 से बलोच नौजवान के कतल करण जो एतराफ़। दहशतगर्द हबीबुल्ला दहशतगर्द तंजीम पैसों की लालच डेई भर्ती कर दहशतगर्दी की तरबियत भी डिनी वही। हमलन बाद सुणप लिकायण फरार थियण जा गुर भी सेखारिया वया। रुगो 25,000 एवज पैंजन बलोच भाईरन के रत से हथ रंगिया। दहशतगर्द तंजीम छदींदड़न के मारियो वेंदो आहे। सिंध जो सरकारी अस्पतालों HIV पखेड़ जो सबब बणजण लग्यूं। गिम्स वलीका लांडी के सोशल सिक्योरिटी अस्पताल बाद कराची की सब का वे बार अस्पताल NICH इलाज ला आयल बार HIV में मुबतला होने की तस्दीक। जरियन मूजिब सिंध के मुख्तलिफ इलाक में इलाज ला NICH आंदल बार टेस्ट कराने दौरान केतर ही बार में HIV की तस्दीक थी है। कराची के मुख्तलिफ इलाक में इलाज ला NICH आयल बार में HIV की तस्दीक थी है। बार जो अंग 50 है।
0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: इरशाद ऑटोज ऐं होंडा शोरूम मेहराबपुर। होंडा मोटरसाइकिल जोधपुर एतमाद बा अख्तियार इदारो इर्शाद ऑटोज होंडा शोरूम मेहरापुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद इर्शाद ऑटोज ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इर्शाद ऑटोज हालानी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाए 03201800003
3: खुशखबरी अपनी जिल्द को दे नई ताजगी चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ अब फिकर छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार फेशियल रेजुविनेशन साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर नोट खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं पता रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नजद रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 03003385 69

0: It's 4:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream, Asli Glow Har Niya Josho, a product by Biocon International Pakistan. खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 0300-338-5569।
3: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो जी एफ एम 94।

0: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज, एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385569।
1: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेहरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम पी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर ए सोम

0: मादे जी अल्सर, मादे जी जलन, दिली जो वधन, जिगर जा मर्ज, हेपेटाइटिस बी सी, गुर्दे जी पथरी, मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो, गुर्दन जो इन्फेक्शन, चेहरे जो रंग सांवरो, चेहरे जी खारिश, फट फुरड़ियों, बारन में कद जो न वधण, मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण, उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो। राब्ते लाइ 0301-2196-851।
1: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलस होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद, आई मा अख्तियार 3S डीलर, आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे ज़रिए, जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वने थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर, राप्ते जिलाए आसिम हुसैन आराई, 0307-3592120।

0: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीट्स और जदीद माइक्रो बीट्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करें फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
1: अस्सलाम वालेकुम अदा।
2: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
1: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
1: न अदा?
3: यार आजकल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर एफएम 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
1: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
2: हां अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
1: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस बुदा।
3: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर। राबते लाए मंसूर अहमद मेमन 0301-380-8347।
4: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज जीए एफएम 94।

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: आज़ाद कश्मीर के आम चूंडन की पहली मरहले में मीरपुर डिवीजन में पोलिंग जो वक्त खत्म। वोटन की गणप शुरू सुबह 8 वगे का शुरू थियल पोलिंग शाम 5 वगे ताई जारी रही। पोलिंग स्टेशन बारा वोटर्स जो कतारू लगल रही। मीरपुर डिवीजन के 3 जिलों मीरपुर कोटली बंबर के 13 तकन से वोटिंग थी। सिक्योरिटी सख्त। आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन कमिश्नर चयो है तो मीरपुर डिवीजन में समूरो चूंड अमल पुरमन रो है।

0: It's 5:15 PM.
1: This time check is brought to you by D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Diya Josho. A product by Biocon International Pakistan. खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385 69।

0: हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी एफ एम 94।
1: शेख आयाज जी सिटन से कहया तो वधिक तां जी जका फरमाइश वसार कोशिश कबी तो पूरी कजे।

0: पर एटलस होंडा मोटरसाइकिल चोपर एटमार्ट आईमा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरा पर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कल रेट ते दस्तियाब है। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी है। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जैर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ते जिला आसिम हुसैन आराई 03073592120।
1: खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामूहू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन MA DHMS सिंध RHMP इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर।

0: गुर्दे की पथरी मसाने की पथरी जो बगैर ऑपरेशन के कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे की खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन औरतन में वजन जो न वधण उन्हें सभी बीमारियों जो कामयाब इलाज कयो वने तो राबते लाए 0301-9196-851।
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राबता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569। अवां जी स्किन डल एं बेरोनक लगे थी, हाने पहिजी स्किन के दियो एक नओ गिलो पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम। अवां जी स्किन के बनाए फ्रेश सॉफ्ट एं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो दी अवां के रेडिएंट लुक रोजानो जे इस्तेमाल सा हर किस्म जी स्किन जे लाए परफेक्ट। हाने थियो खूबसूरत थियन वधिक आसान। वाइट एज ब्यूटी क्रीम खूबसूरती जेका चमके हर दी बेहतरीन रिजल्ट हासिल कर लाए। वाइट एज ब्यूटी क्रीम सा गड इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सा मिले चमकदार निखार ताजगी सा गड। वाइट एश ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।

जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 मिंटन ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क।

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: आजाद कश्मीर जी आम चूंड के पहले मरहले में मीरपुर डिवीजन में पोलिंग जो वक्त खत्म, वॉन्टेड की गड़प जारी। शाम 5 वगे का खत्म थींदड़ पोलिंग जो वक्त वधाए 6 कयो वयो हो। पोलिंग स्टेशन बहरां वॉन्टर्स जो कतारू लगल रही। मीरपुर डिवीजन के 3 जिलों मीरपुर, कोटली और बंबर के 13 तकन से वोटिंग थी। सिक्योरिटी इंतजाम इंतहाई सख्त रखा वाया। आजाद कश्मीर के इलेक्शन कमिश्नर चयो है त मीरपुर डिवीजन में समूरो चूंड अमल पुरमन रहो है।

पीपल्स पार्टी ऐं नून लीग जो आज़ाद कश्मीर में चूंडुनि दौरान हिक ॿिए ते धांधलीअ जो इल्ज़ाम। फायरिंग वारे वाक़े में पीपल्स पार्टी कारकुन क़तल। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी पारां शहीद कारकुन जे वारसनि सां ॾुख जो इज़हार। बिलावल भुट्टो ज़रदारी चयो त शिकस्त ॾिसी पीपल्स पार्टी मुख़ालिफ़ परेशान थी विया आहिनि। नून लीग जे उमेदवार सरदार उमेर नईम फायरिंग करे मुंहिंजे जियाले मुख़्तार यूनस खे शहीद कयो। लाॻापियल अमलदार ऐं इलेक्शन कमीशन छा करे रहियो आहे?

0: कॉलम में मौजूद आहिन फौजी भाईर फौजी अब्दुल करीम 0301 54 4056 ऐं तौकीर अहमद 0306 16 23 793।
1: अस्सलाम वालेकुम अदा।
2: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
1: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
1: न अदा?
0: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर एफएम 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
1: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
2: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
1: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
0: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नर्थ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
2: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
3: 03013992836।

खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385 69।

0: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चुपर एटमाट आईमा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कल रेट ते दस्तियाब है सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जैर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ती जिला आसिम हुसैन आराई 03073592120
1: खुशखबरी क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं अब फिक्र छोड़िए शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड PRP ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए नए बालों की निशोनुमा में मदद दे बालों को घना और सेहतमंद बनाए घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद खरी रोड मेहरापुर 03003385569 सूरतीय जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ए जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी ए चमकदार सिर्फ बिन दीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म ए दिए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर नीह जोशो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: आजाद कश्मीर कानून साज असेंबली के चूंडन के पहरे मरहले लाए मीरपुर डिवीजन में पोलिंग जो वक्त खत्म थियण का पोए वोटन की गणप जारी। मीरपुर कोटली बंपर के 13 तकन में 14 लख का मथे रजिस्टर्ड वोटर्स कायम थियल 2454 पोलिंग स्टेशन में पंजे वोट जो हक इस्तेमाल कयो। औरतुन जो वडो अंग भी वोट कास्ट करण लाए पोलिंग स्टेशन ते पहुंचे। पीपल्स पार्टी नवाज लीग इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी आजाद उम्मीदवार समेत 296 उम्मीदवार मैदान से लथल। वोटरन के गैर मामूली टर्नआउट सबब पोलिंग जो वक्त एक कलाक वधायो वयो हो।

खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेरापुर कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमपी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर ऐं

0: वठनी पौंदी मायरे अमराज नक कन गलो पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वहण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंग टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-9196-8151।
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए नए बालों की निशोनुमा में मदद दे बालों को घना और सेहतमंद बनाए घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 03003385 69।

इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम बहरा पर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम बहरा पर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब है सर्विस सेंटर एटलेस

0: होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनिया जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 0320180003।
1: अस्सलाम वालेकुम अदा।
2: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
1: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
1: न अदा?
3: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो, मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
1: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
2: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
1: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
3: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालाणी रोड मेरापुर राबते लाए मंसूर अहमद मेमन 0301-380-8347।
4: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो जी FM 94।

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से अमरीकी कांग्रेस के वफद की मुलाकात, खिते की मौजूदा सूरत हाल ए दिफाई सहकार वधाने ते गाल बोल, बेतरफन व्यापारी ए इक्तसादी राबतन ते भी ख्याल की दे वठ। ISPR मूजिब रियान केथ जनकी ए माइकल जेम्स GHQ जो दौरो कयो। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर पाकिस्तान के वसी इक्तसादी सलाहियतुन ते रोशनी विधी। पाकिस्तान ए अमरीका जा लागापा वधिक मजबूत बनायण ए मुख्तलिफ शोबन में सहकार वधायण जो भी अजम वरचायो वयो। आज़ाद कश्मीर कानून साज असेंबली के चूंडन के पहरें मरहले लाए मीरपुर डिवीज़न में पोलिंग जो वक्त खत्म थियण का पोई वोटन की गणप जारी। मीरपुर कोटली ए बमपत के 13 तकन में 14 लख का मथे रजिस्टर्स वोटर्स कायम थियल 2454 पोलिंग स्टेशन्स में पंजे वोट जो हक इस्तेमाल कयो। औरतुन जो वडो अंग भी वोट कास्ट करण लाए पोलिंग स्टेशन्स ते पहुंतो। पीपुल्स पार्टी, नवाज लीग, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ए आज़ाद उम्मीदवारन समेत 296 उम्मीदवार मैदान ते लथल। वोटर्स के गैर मामूली टर्न आउट सबब पोलिंग जो वक्त एक कलाक वधायो वयो। पीपुल्स पार्टी ए नून लीग जो आजाद कश्मीर में चूंडन दौरान एक बेदे दांधली जा इल्ज़ाम। फायरिंग वाले वाके में पीपुल्स पार्टी कारकुन कतल। पीपुल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो पारां शहीद कारकुन के वारसन सा दुख जो इजहार। बिलावल भुट्टो चयो त शिकस्त ॾिसी पीपुल्स पार्टी मुखालिफ परेशान थी विया आहिनि। नून लीग जे उम्मीदवार सरदार उमेर नईम फायरिंग करे जियाले मुख्तार यूनस खे शहीद कयो आहे। पंजाब जी सूबे वज़ीर उज़्मा बुखारी जो आज़ाद कश्मीर जी चूंडुनि में पीपुल्स पार्टीअ ते दांधली जो इल्ज़ाम।
2: सोलर ऐं बैटरी ते डायरेक्ट हले ऐं बाकी तमाम पखन जे मुकाबले में ॿे ज़बरदस्त हवा। रॉयल इन्वर्टर फैंस साथ ज़िंदगी भर का।

0: नहीं मेरे।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: माशाला फौजी पाइप फैक्ट्री नर्स गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरा पर असा वट जगह जो जारियो जगह जा पावा आई पाइप डेढ़ ब चार छह नव आई बारह इंच में प्लेन आई कॉलम में मौजूद आहिन। फौजी भाइरन लाए खसूसी रियायत होंदी। राबते लाए फौजी अब्दुल करीम 0301-5431-456 आई तौकीर अहमद 0306-1623-793।
3: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जैमे मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर राबते जे लाइ 0320-18-00-003।
4: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। 0300-338-5569।
5: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन। मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, शानदार तालीमी इमारत, प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन, एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार, मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला, सरसब्ज बागीचा, बेहतरीन फर्नीचर, शानदार कंप्यूटर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स, ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जा, एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिले तहसीन नतायज, खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले, तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले, स्टडी टूर्स, अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन, मैनेजिंग डायरेक्टर मजर स्कूल सिस्टम, 0300-002-7234। निसार अहमद मेमन, प्रिंसिपल मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, 0301-386-5453।
6: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
7: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तियाब आई।
6: हाँ यचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी।
7: राबते लाए प्रोपराइटर गुलाम नबी मुगल 0300-320-4372-0242-46-0100।
8: अस्सलाम वालेकुम अदा।
9: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई
8: अदा? नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
9: अदा? दुकान जी मशवरी कराई थई
8: न अदा?
6: यार आजकल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मो पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
8: मुझे दुकान जी बे डरंदी?
9: हां अदा, कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी। ही आए
8: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
6: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर
9: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
0: 03013992836

खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेरापुर कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमण एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमपी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा ख़मीस जुमे छंछर आचर ऐं सूमर।

0: पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों ॿारनि में कद जो न वधण मर्दनि ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-851
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल की कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएम जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 0320180003
2: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
3: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंग सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारियत दस्तियाब आई
2: हाँ अचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी
3: राब्ते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300-320-4372
4: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम

0: मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फॉली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: सुनिए

0: इसको कश्मोर ना समझना, ये कश्मीर है, कश्मीर पूरे मीरपुर खास नहीं है। समझते हो या नहीं समझते? क्या किया आपने आजाद कश्मीर के लिए, क्या किया बताओ मुझे जरा। मेरी बात का बुरा ना मानना बिलावल भाई।
1: ऐसा बुरा ना माने, मगर कश्मीर हो या कश्मोर, मीरपुर हो या मीरपुर खास, इनके सिर्फ नाम नहीं मिलते, इनका मिजाज भी मिलता है, इनका गैरत भी मिलती है और अपने हक के लिए खड़े होने का हौसला भी मिलता है। कश्मोर हो या कश्मीर, कोई अपने हक के हाकमियत या हक मालकियत पर किसी को सियासी ताकत नहीं डालने दे।
2: आज़ाद कश्मीर कानून साज असेंबली के 13 तकनि ते चूंड जा गैर हतमी ए गैर सरकारी नतीजा अचण जो सिलसिलो जारी। चूंडन के पहरे मरहले में मीरपुर कोटली ए बंपर के 13 तकनि में 14 लख का मथे रजिस्टर्ड वोटर्स कायम थियल 2454 पोलिंग स्टेशन्स में पंजी वोट जो हक इस्तेमाल कयो। औरतुन जो वडो अंग भी वोट कास्ट करण लाए पोलिंग स्टेशन्स ते पहुतो। पीपल्स पार्टी ए नवाज लीग के उम्मीदवार विच में चोटी जो मुकाबलो। वोटर के गैर मामूली टर्नआउट सब पोलिंग जो वक्त 1 कलाक बढ़ाया वो हो। पीपल्स पार्टी ए नून लीग जो आजाद कश्मीर में चूंडन दौरान एक बे दांधली जो इल्जाम। फायरिंग वाले वाक़े में पीपल्स पार्टी कारकुन कतल। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी पारा शहीद कारकुन के वारसन से दुख जो इजहार। बिलावल भुट्टो तो शिकस्त ऐसी पीपल्स पार्टी मुखालिफ परेशान थी वह आहन। न्यू लीग के उम्मीदवार सरदार उमेर नईम फायरिंग करे जियाले मुख्तार यूनस के शहीद किया है। पंजाब की सूबाई वजीर उज़्मा बुखारी जो आजाद कश्मीर की चूंडन में पीपल्स पार्टी से दांधली जो इल्जाम। नून लीग पंजन बदमाशन ए गुंडन के लगाम दे। गुलू बटन पीपल्स पार्टी के एक बे वर्कर के भी शहीद करे फासिस्ट रवायत बरकरार रखी। नून लीग उम्मीदवार पारा हथियार के आजादाने इस्तेमाल ते इलेक्शन कमीशन की खामोशी समझ का बाहर है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन है तो फार्म 47 की पैदावार ए खैराती मैंडेट वारा कश्मीर में माहौल खराब कर रहा है। नून लीग क्यादत कन खोली बुधी छे कश्मीर जो पुरमन माहौल खराब थे न दिनों वो। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ए अमरीकी कांग्रेस के वफद पारा दिफाई ए व्यापारी सहकार वधाने ते इतफाक। रायन कैथ जनकी ए माइकल जेम्स पारा GHQ रावलपिंडी में फील्ड मार्शल से मुलाकात। खिते की मौजूदा सूरत हाल दिफाई सहकार वधाने भी तरफन व्यापारी इकतसादी राबतन ते भी ख्याल की डे वठ। सैयद आसिम मुनीर है तो पाकिस्तान में इकतसादी तरक्की जहा तमाम घड़ा मौका मौजूद हैं। पायदार इलाकई इस्तेहकाम मुआशी तरक्की व्यापार के हथी दियण ए राबतन से वागिल है। ISPR मौजे मुलाकात फील्ड मार्शल अमरीकी वफद विच में मुलाकात दौरान पाकिस्तान अमेरिका जा लागापा वधिक मजबूत बनाने मुख्तलिफ शोबन में सहकार वधाने जो भी अजम वरचायो वयो। ईंदड़ बिन महीनन लाए व्याज की शरह 12.5% बरकरार। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान मॉनिटरी पॉलिसी जो ऐलान करे छड्यो। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद है तो जुलाई का फेबरवरी ताई महंगाई 5.5% हुई। माली साल 2026 में करंट अकाउंट खसारो 13.90 करोड़ डॉलर रो। माली साल 2027 में करंट अकाउंट खसारो GDP के हिसाब से 0.1% रो। सभी अदायगन बावजूद नाणे की मटासटा जखीरा बढ़िया।

0: भारत खिते में दहशतगर्दीअ जो सभ खां वॾो सरपरस्त आहे ऐं अदम इस्तेहकाम जो ज़िमेवार आहे। दिफ़ा वारे वज़ीर ख़्वाजा आसिफ़ भारती वज़ीर राजनाथ सिंह जे बयान खे रद्द कंदे चयो आहे त भारत जे जारहाणनि क़दमनि सबबि खितो यरगमाल बणियल आहे। भारती वज़ीर जी बयानबाज़ी बि गणती जोगी आहे, जेका ख़तरनि खे वधीक वधाए रही आहे। अमरीका खे ॻाल्हियूं बहाल करण जी दरख़्वास्त नाहे कई, ईअं करणु असांजे फितरत में नाहे। ईरानी परॾेही वज़ारत जे तर्जुमान इस्माइल बकाई चयो आहे त सालिस असां ताईं अमरीका जा पैगाम पहुचाईंदा आहिनि, फ़िलहाल वॉशिंगटन सां असांजी का बि ॻाल्हि ॿोल न थी रही आहे। आबनाए हुरमस बाबति ओमान सां मुस्बत ॻाल्हियूं थियूं आहिनि, आबनाए हुरमस जी सूरत हाल तब्दील नाहे थी। अमरीका खे जंग ऐं अमन जो वक़्तु तय करण जी इजाज़त न ॾिनी वेंदी। यूक्रेन खे ईरानी जहाज़ ते हमले जो जवाब ज़रूरु ॾियणो पवंदो। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप हथियारनि जे ज़ख़ीरे में खोट वारनि ख़बरुनि खे रद्द करे छॾियो। डोनाल्ड ट्रंप चयो आहे त अमरीका ईरान सां संजीदा ॻाल्हियूं करे रहियो आहे, सफ़ारतकारी ते घणो वक़्तु ज़ाया नथो करे सघिजे। ॻाल्हियुनि ऐं सफ़ारतकारी खे जल्दी इकलायो वञे, ॻाल्हियूं नाकाम थियूं त पहिरियां खां वधीक सख़्तु हमला कया वेंदा। ईरान आबनाए हुरमज़ मां गुज़रण जी कोशिश कंदड़ 6 बहिरी ॿेड़नि खे रोके छॾियो। ईरानी सरकारी मीडिया मूजिबि आबनाए हुरमज़ जी गैर महफ़ूज़ रस्ते तां सफ़र जी कोशिश कंदड़ 6 बहिरी ॿेड़नि मां हिकु हादसे जो शिकार थियो आहे। बहिरी ॿेड़ा अमरीकी
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर, होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिं में मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर, राब्ते जे लाइ 03201800003।
3: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर।
4: 3300 3885 69। दरवाजा, सिल्वर जा चौंक, सीमेंट, रेती, क्रेश ऐं रंग वग़ैरह बाज़ार खां बारियर दस्तियाब आहिनि।
5: हाणे अचो मेहरान आयरन स्टोर, नज़द बलोच पेट्रोल पंप, नेशनल हाईवे, हालाणी।
4: राब्ते लाइ प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल, 03003204372 ऐं 02424601000।
2: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलस होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो। कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जे हमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएम जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जैर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ती जिलाए आसिम हुसैन आराई 0307 3592120

ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फ़ौजी ॿाहिरनि लाइ ख़ुसूसी रिआयत हूंदी। राब्ते लाइ फ़ौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 ऐं तौक़ीर अहमद 0306।

0: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, खरी रोड मेहरापुर, 03003385569।
1: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेहरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम पी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर सूमर।

0: चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वज़न जो न वधण उन्हें सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-9196-51।
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज। एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 0300-33-85569।
2: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर, होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो। इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर, नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएम जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर, राब्ते जे लाइ 0320-18-00003।
3: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। 03003385699।

चूंड जा गैर हतमी ए गैर सरकारी नतीजा अचण जो सिलसिलो जारी। चूंडन के पहरे मरहले में मीरपुर कोटली ए बंबर के 13 तकन में 14 लख का मथे रजिस्टर्ड वोटर्स कायम थे। 2454 पोलिंग स्टेशन्स में पंजे वोट जो हक इस्तेमाल कयो। औरतुन जो वडो अंग भी वोट कास्ट करण लाए पोलिंग स्टेशन्स से पहुंतो। पीपल्स पार्टी ए नवाज लीग के उम्मीदवार विच में चोटी के मुकाबले का इम्कान। वोटन के गैर मामूली टर्नआउट सबब पोलिंग जो वक्त 1 कलाक वधाए वो हो।

0: फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ऐं अमरीकी कांग्रेस जे वफ़द पारां दिफ़ाई ऐं वापारी सहकार वधाइण ते इतफ़ाक़। रायन केथ ज़िनकी ऐं माइकल जेम्स पारां GHQ रावलपिंडीअ में फील्ड मार्शल सां मुलाक़ात। हिते जी मौजूदा सूरतहाल, दिफ़ाई सहकार वधाइण, बेतरफ़न वापारी ऐं इक़्तिसादी राब्तनि ते ख़्यालनि जी ॾे वठि। आसिम मुनीर चयो त पाकिस्तान में इक़्तिसादी तरक़ी जा तमामु घणा मौक़ा मौजूदु आहिनि। पायदार इलाक़ाई इस्तेहकाम मुआशी तरक़ी वापार खे हथी ॾियणु ऐं राब्तनि सां वाघियल आहे। ISPR मूजिब मुलाकात दौरान फील्ड मार्शल ऐं अमरीकी फ़द विच में मुलाकात दौरान पाकिस्तान ऐं अमरीका जा लाॻापा वधीक मज़बूत बणाइण ऐं मुख़्तलिफ़ शोबनि में सहकार वधाइण जो बि अज़म वरचायो वियो। ईंदड़ ॿिनि महीननि लाइ व्याज जी शरह 11.5% बरक़रार। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान मॉनिटरी पॉलिसी जो ऐलान करे छॾियो। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद चयो आहे त जुलाई खां फेबरवरी ताईं महांगाई 5.5% हुई। माली साल 2026 में करंट अकाउंट खसारो 13.90 करोड़ डॉलर रहियो। माली साल 2027 में करंट अकाउंट खसारो GDP जे हिसाब सां 0.5% रहंदो। सभिनी
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है। सुनते रहो GFM 94।